बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि तदनुसार दिनांक 7 अगस्त वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित है हिंदी में समाचार।

0: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गए। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर

0: तक बढ़ाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशनार्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
3: जब से ये धरती है तब से ही फूल इस धरा को महका रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व से भी पहले इस धरती पर पानी और वनस्पति ने ही अपने सौंदर्य को बिखेरा होगा। दूर दूर तक फैली हुई घाटियां हरियाली की चादर ओढ़े अपने सतरंगी रूप में जब हमारे सामने होती है तब हमें यकीन ही नहीं होता कि ईश्वर कितना मेहरबान है। और प्रकृति की इस छटा में 4 चांद लगाते हैं वो पुष्प जो अपनी रंगीनियत से धरती की हरियाली को श्रृंगारित करते हैं। फूल और उनके पराग, उनका रस तितलियों और भंवरों के लिए ही होता है। कितने ही कीट पतंगों का जीवन फूलों पर निर्भर है। एक फूल पर तितली का मंडराना हमें एक अलग ही आनंद देता है। एक फूल का अपने पेड़ पर खिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी माँ की गोद में उसका शिशु खिलखिला रहा हो। एक फूल का खिलना हमें उम्मीद से भर देता है। जब फूल खिलखिलाते हैं तब जीवन के सभी दुख हम भूल जाते हैं। फूलों का खिलना हमें सकारात्मकता से भर देता है और फिर ओस की बूंदों को अपने आप में समेटे जब गुलाब अपनी पूरी रंगीनियत के साथ मुस्कुराता है तब हमें उसकी

0: तपस्या को भी समझना चाहिए। फूल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, अपनी खूबसूरती और सुगंध वो हमेशा दूसरों पर न्यौछावर करता है। इसमें एक बड़ा संदेश हम सबके लिए भी है कि हमारी अच्छाइयाँ मनुष्यता के लिए हों। हमारे आंगन के बगीचे और गमलों में मुस्कुराते फूलों को देखिए, वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए औषधि का काम करती है। निस्वार्थ रहिए और अपनी खुशियां दूसरों पर लौटाते रहिए एक फूल की तरह।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। वंदना कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये देश गान।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6:30

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे और पुनः 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। प्रातः 9:10 पर और पुनः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग को आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर, प्रातः 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह का सीधा सजीव प्रसारण।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर और पुनः रात्रि 9:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

कार्यक्रम चौपाल को आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश। वहीं हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। सुबह के 6:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम खेती नी बात का।
1: बात कार्यक्रम हमारा आ रहा है सब बहनों बहनों ने सोरा थे खेलता हुए ना राम राम राम राम बहनों बहनों आज सोरा ऊपर अपने बात कर वर्षा ऋतु में अपने खेत में जाऊं तो घने प्रकार ना जहर जानवर ने अन्य मौसम में अपने खेत में जाऊं तो हम सावधानी रखे पड़े इन बार हम चर्चा करूं भाई बहन ही खेत में काम रहने जाए सी उड़े अपने फसलें भी अच्छी थे रही बारिश में अपने सोयाबीन मक्का कपास दलहनी फसलें करी थी कि बरसात के मौसम में घना प्रकार ना जीव जानवर थे रही हमें बेला में बरसात में पानी भरे गया जिनकी की जहरीले जानवर है जिनके सांप है बिच्छू है वगैरह बाहर तो निकले आ रहे अपने जवान अगर ध्यान नहीं रखा गलती थी यहाँ पर पॉक पड़ी गया तो अपन कल भी शकी घना घना प्रकार की दुर्घटना थे जाए ने आने समय में अपना हवा में पे आवे कि घना जहरीले जानवर है खेत में रहे ने किनिक काटी लीधु जिनकी मृत्यु थे की एवं समाचार आम थे गया है तो एने बल्ले अपने थोड़ा विशेष ध्यान रखो पड़े की जब अपने खेत में जाऊ तो एक तो अच्छा जूता पहन जाओ जो बरसाती जूता आवे पहन जाओ है बीजो अपने इंदिरा हो तो हेड़ा ऊपर इंदू है अगर खेतर में ना अपन जाओ पड़े तो ध्यान थे कि हम बारे में जाओ जो है इन्हें अलावा पा एक लाकड़ी रखो जिन थे कि है रस्तो बना तो जिन पर जाओ है या झाड़ी वगैरह रही इन्हें ध्यान रखो है कि आप लोग पौग नहीं पड़ी जा पौग मना तो भी ध्यान रखो है घर में कोई प्रकार जानवर वगैरह अपने ती लकड़ी थी घास फूस हटावे पसरा पड़े अगड़ी बढ़ुआ बीजो एक ध्यान रखो कि कहीं भी झाड़िया हो या फिर अपने खेतर में या फसल वैसे घास उगी हो तो इन्हें भी ध्यान रखो है कि सावधान थी टप भी है बना देखिए डायरेक्टर ने आत नाखी ने अपने घास वगैरह उखड़वा जाऊंगा या खरपतवार उखड़वा जाऊंगा थी या कोई प्रकार नो जानवर हो कोई प्रकार बिच्छू वगैरह हो भी काटी सके तो होने बात में अपने विशेष ध्यान रखी ने कार्य करो है बीजो आना समय में अगर मौसम थोड़ा कवर करो हो तो खरपतवार उखड़वा नो काम भी कर ले वो है अपने खेत्र में अपनी फसल हाथे हाथी खरपतवार भी थाती जा समय समय पर उखाड़ती बड़ी थाती जा हाथे जे अपने खेत्र में अपने फसल में उर्वरक मिलो खाद मिलो इन्हें पोषण खरपतवार प्राप्त करते कर ले मैं अपने फसल ही कमजोर रह जा खरपतवार बड़ी थी जा तो समय समय पर इन्हें उखड़वानु काम करू बीजो अपने घर ने आसपास बागवानी वगैरह भी करूँ तो बागवानी भी विशेष ध्यान रखो कि भी अगर झाड़ी हो खत पर खरपतवार वगैरह उगी हुई तो इन्हें भी ध्यान रखो है हाथी घर में आसपास खुली जगह पर भी करूँ तो इन भी अगर कोई बड़ी बड़ी घास थी जा तो इनमें भी जहरीले जानवर वगैरह आई नाम पैसे तो इन्हें भी समय समय पर सफाई करते रहो अपने घर में आसपास भी देखो है कि कई प्रकार जहरीले जानवर वगैरह अन्न छुपाने जगह नहीं हो बीजो बरसात के समय में जगह जगह पर अपने बरसाती पानी इकट्ठे रहे इनके मच्छर वगैरह भी पनपे जाए तो इन्हें भी समय समय पर साफ सफाई करते रहो नहीं घर में आसपास कहीं नाली वगैरह हो जिनमें पानी इकट्ठे रहो तो सफाई करना पड़े या फिर इन्हें मच्छर ना लार्वा मर जाए इन्हें दवाई में छिड़काव करो इन्हें हाथी अपन घर में आसपास कहीं भी खाली बर्तन पड़े हो जिनमें बरसाती पानी इकट्ठे रहे तो इन्हें भी ध्यान रखो कि बर्तन वगैरह नहीं पड़ेगा रहे जिनमें बरसात के पानी इकट्ठे हो रहे खड्डा वगैरह हो तो इन्हें भी भर देना है इन चीजों में ध्यान रखो है ताकि अपने दुर्घटना की बच्ची बनो घर में बाहर अपने जूते वगैरह मिलो तो इन्हें भी घना बदम था कि जानवर वगैरह मैं आगे कोई रही सके अपने बना दे के पैर लंगा तो अपने काटी दे सके तो ध्यान रखो है की जूते वगैरह अपने पैर बारते तो इन्हें अच्छी तरह की कंकी लेनी साफ सफाई कर पसे पैर वो है तो आ कुछ चीजें हैं जो बरसात के मौसम में अपने ध्यान रखनी जरूरी है इनके अलावा अपने बिजली में उपकरण है इन्हें भी अड़वा में अपने विशेष सतर्कता बरती है अगर बरसात के मौसम में अपने थोड़े सावधानी कार्य करेंगे तो अपने दुर्घटना थी बची ले रही सको सर पर अपने बरसात के मौसम में हम सावधानी रखो इन बार हम बात करी बात ऐसी कर रही थी पर सोरा ना समय है पूरा थी गया तो अस्थिरता बन गया क्या हलो
2: राम राम
0: कार्यक्रम खेती निवाद यहीं पर संपन्न।

हुआ। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गुमानेंग व साथियों द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। इसी गीत के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं संदेश जैन से देशभक्ति गजल।
1: मैं शुरुआत अपने 4 मिसरों से करता हूं, अपने परिचय की 4 पंक्तियां देता हूं कि धन्य धराई स्वागत की, कि धन्य धराई स्वागत की मैं अमर दास्ता रखता हूं, कि धन्य धराई स्वागत की मैं अमर दास्ता रखता हूं। मैं प्रताप राणा सा चित्तौड़ी स्वाभिमान रखता हूं और बलिदानी स्वामी भक्ति सिखलाई है मां पन्ना ने, कि बलिदानी स्वामी भक्ति सिखलाई है मां पन्ना ने। मैं तिरंगा आंखों में दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं तिरंगा आंखों में दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं तिरंगा आंखों में दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। साहब तिरंगे की बात हो गई है, मैं अपनी गजल तिरंगे से शुरू करता हूं, मतलब अर्ज करता हूं कि तिरंगा आन बन जाए, तिरंगा शान हो जाए, तिरंगा

तिरंगा शान हो जाए, वतन के वास्ते तन मन सभी कुर्बान हो जाए, वतन के वास्ते तन मन सभी कुर्बान हो जाए। और मेरी ख्वाहिश है साहब, मिले अगर जन्म फिर मुझको मुझे सैनिक बना देना, मिले अगर जन्म फिर मुझको मुझे सैनिक बना देना, मेरा ईमान मेरी जान ये हिंदुस्तान हो जाए।

शानिहोदय वो शेर देखेंगे, खड़े हैं सरहदों पर जो हमारी आन की खातिर, खड़े हैं सरहदों पर जो हमारी आन की खातिर, सपूतों के लिए दिल से चलो सम्मान हो जाए, सपूतों के लिए दिल से चलो सम्मान हो जाए। नहीं बांटें वतन को हम सियासी दाव पेचों से, नहीं बांटे वतन को हम सियासी दाव पेचों से, भगत शेखर के सपनों सा ये हिंदुस्तान हो जाए, भगत शेखर के सपनों सा ये हिंदुस्तान हो जाए। और अगला शेर देखेगा, हमारे देश को अखंड रखने के लिए हमें नारी का सम्मान भी बहुत जरूरी है। तिरंगे के साथ साथ शेर अर्ज करता हूं कि करे सम्मान नारी का नहीं दुष्कर्म हो कोई, करे सम्मान नारी का नहीं दुष्कर्म हो कोई, रखे इंसानियत जिंदा हर एक इंसान हो जाए, रखो इंसानियत जिंदा हर एक इंसान हो जाए। और वक्ते का शेर अर्ज करता हूं, करे हम कर्म सब ऐसे दिखे तहजीब भारत की, हमारा हर कर्म ऐसा हो कि लगे हम भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है। करे हम कर्म सब ऐसे दिखे तहजीब भारत की, बने फिर विश्व गुरु भारत सफल अभियान हो जाए, बने फिर विश्व गुरु भारत सफल अभियान हो जाए, बने फिर विश्व गुरु भारत सफल अभियान हो जाए। और मेरा यह मानना है कि आज हम जिस आजाद हिंदुस्तान में हैं, यह आजाद हिंदुस्तान अगर हमको मिला है तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए मिला है जो -50 डिग्री के तापमान में या 50 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में दोनों में सरहद पे खड़े हमारे लिए 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं, तब हम यहाँ पर हमारे त्योहार वगैरह मना पाते हैं। मैं अपनी गजल के हूँ शब्द सुमन करता हूँ, उनके पावन चरणों में नमन करता हूँ और मैं पंक्तियां अर्ज करता हूँ कि तुम झुका दो नजर ये नमन के लिए, तुम झुका दो नजर ये नमन के लिए, उस तिरंगे में लिपटे बदन के लिए, तुम झुका दो नजर

है गरल जो अमन के लिए पी रहा है गरल जो अमन के लिए पी रहा है गरल जो अमन के लिए नाम का पाक है हरकतें हैं बुरी नाम का पाक है हरकतें हैं बुरी नाम का पाक है हरकतें हैं बुरी

0: रतन के लिए। एक चार पंक्तियों का उत्तर मेरे को याद आता है, याद आता है। अर्ज करना चाहता हूं कि कलम मेरी सिखाती है किसी से भी नहीं डरना, कलम मेरी सिखाती है किसी से भी नहीं डरना, किसी भी स्वार्थ के आगे नहीं बिकना नहीं झुकना। कलम मेरी सिखाती है किसी से भी नहीं डरना, किसी भी स्वार्थ के आगे नहीं बिकना नहीं झुकना। यही संदेश का माशार दे अरमान हो जाए, यही संदेश का माशार दे अरमान हो जाए। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। और चार पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूं कि हम वतन को अपनी माँ अपनी शान कहते हैं, हम वतन को अपनी माँ अपनी शान कहते हैं, और तीन रंगे में सजे तिरंगे को अपनी जान कहते हैं। हम वतन को अपनी माँ अपनी शान कहते हैं, तीन रंगों में सजे तिरंगे को अपनी जान कहते हैं। आपके दिल में क्या है यह आप ही जानिए, आपके दिल में क्या है यह आप ही जानिए। हम मोहब्बत किस माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, हम मोहब्बत किस माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक और गजल मेरी सपूतों के लिए कही है, वीरों के लिए कही है, शहीदों के लिए कही है, वो भी आज इस मौके पर अर्ज करना चाहता हूं। मेरी ये आन मेरी शान मेरी ये जान तुमसे है, मेरी ये आन मेरी शान मेरी ये जान तुमसे है, अना मेरी जो जिंदा है मेरा सम्मान तुमसे है। मेरी ये आन मेरी शान मेरी जान तुमसे है, अना मेरी जो जिंदा है मेरा सम्मान तुमसे है। तुम्हारी शहादत का क्या कोई भी मोल दे पाए, तुम्हारी शहादत का क्या कोई भी मोल दे पाए। अरे मिला है जो हमें आजाद वो हिंदुस्तान तुमसे है, मिला है जो हमें आजाद वो हिंदुस्तान तुमसे है। तुम्हारी शहादत का क्या कोई भी मोल दे पाए, मिला है जो हमें आजाद वो हिंदुस्तान तुमसे है। और कोई मुश्किल कभी राहे न तेरी रोक है पाई, कोई मुश्किल तेरी राहे कभी न रोक है पाई, कोई मुश्किल कभी राहे न तेरी रोक है पाई। तुम्ही से ये है हिंदुस्तान वतन की शान तुमसे है, तुम्ही से है हिंदुस्तान वतन की शान तुमसे है। सुना आंगन भीगा आंचल सुनी बिंदी और राखी ने, सुना आंगन भीगा आंचल सुनी बिंदी और राखी ने। बहाया है जो आंसू से वो गौरव गान तुमसे है, बहाया है जो आंसू में वो गौरव गान तुमसे है। मेरी ये आन मेरी शान मेरी ये जान तुमसे है, अना मेरी जो जिंदा है मेरा सम्मान तुमसे है। और शेर देखेंगे, तुम्हारे शौर्य की गाथा कहे इतिहास भारत का, कि तुम्हारे शौर्य की गाथा कहे इतिहास भारत का। भगत शेखर के सपनों का ये हिंदुस्तान तुमसे है, भगत शेखर के सपनों का ये हिंदुस्तान तुमसे है। और बुलंदी पर रहे संदेश ये तस्वीर भारत की, अंतिम शेर है कि बुलंदी पर रहे संदेश ये तस्वीर भारत की। बने जो विश्व गुरु भारत तो ये यशगान तुमसे है, बने जो विश्व गुरु भारत तो ये यशगान तुमसे है, बने जो विश्व गुरु भारत तो ये यशगान तुमसे है। बहुत बहुत आभार।
1: आप सुन रहे थे संदेश जैन से देशभक्ति पर गजल। कार्यक्रम वातायन यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विश्वास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मुकेश और आशा भोसले की, गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आज हमें रहे प्यार के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, सुंदर भाव और विलक्षण रचनाओं का स्मरण कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा के। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: रफू चक्कर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की

0: देखे हमें सुन रहे रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: शादी वाली क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाय हाय,
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे

खेल खेल में फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।

निशान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार थे गुलशन बावरा। गुलशन बावरा का लिखा एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं अदालत फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: सपनों के साथ थिरकते कदम। पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
1: निकला तो गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म अनजाने में का ये गीत अभी आपने किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलशन बाबरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है।

0: झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।

0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार

0: में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉपगन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम।
4: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह का समय है और ये समय है एक ऐसी चीज पर बात करने का जिसके बिना भारत में किसी की सुबह, दोपहर या शाम पूरी नहीं होती। जी हां, सही पहचाना आपने। आज हम बात करने वाले हैं हमारी और आपकी प्यारी गर्मा गर्म चाय के बारे में। बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो, आसमान में धूप हो या रिमझिम फुहारे, लेकिन हमारे देश में हर मूड की एक ही दवा है, एक कप गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय।

मौसम कोई भी हो, कड़कड़ाती ठंड, झमाझम बारिश या फिर अल सुबह की हल्की सी गुदगुदाती धूप, एक चीज है जो हर हिंदुस्तानी के दिल के सबसे करीब रहती है, हमारी और आपकी चहेती चाय। चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है दोस्तों, ये तो एक एहसास है। जब तक सुबह सुबह कप से उठती हुई भाप चेहरे पर ना लगे, तब तक आंखें पूरी तरह खुलती कहां है। और फिर वो अदरक और इलायची की खुशबू, मानो पूरे दिन की थकान छूमंतर हो जाए। कहते हैं कि दुनिया में हर समस्या का समाधान चाय के पास है। खुशी हो तो चाय पीते हैं, दुख हो तो आओ यार एक चाय हो जाए, और अगर बारिश हो जाए तब तो पकौड़े और चाय का कॉम्बिनेशन ही भगवान की सबसे बेहतरीन रचना लगने लगती है।

भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का जरिया है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हमारी जिंदगी का असली मजा है।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। श्रोताओं सोचकर देखिए, सुबह की पहली किरण और अदरक वाली चाय, या फिर शाम ढलते ही दोस्तों के साथ टपरी पर मिलने वाली वो लेमन टी या मसाला चाय। चाय सिर्फ पत्ती और दूध का मेल नहीं है, ये तो हमारे इमोशंस का परमानेंट एड्रेस है। जब सिर दर्द हो तो चाय, कोई खुशखबरी हो तो चाय, और दोस्तों को कोई लंबी बहस छिड़ जाए तो बिना चाय के उसका निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। श्रोताओं, वैसे चाय की खोज लगभग 2737 ईसा पूर्व चीन में हुई थी, लेकिन भारत में चाय का व्यावसायिक उत्पादन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम में शुरू किया गया था, और देखते ही देखते आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है।

श्रोताओं, दिन चाहे कितना भी भागदौड़ भरा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही कप में वो कड़क अदरक वाली चाय ढलती है ना, उसकी सौंधी सी खुशबू दिल के किसी कोने में उतरकर सारा तनाव चुटकी में गायब कर देती है। चाय सिर्फ पानी, दूध और पत्ती का घोल नहीं है दोस्तों, ये तो एक बहाना है खुद के लिए दिन में से 10 मिनट चुराने का, और कभी कभी अकेले बैठकर अपनी ही पुरानी यादों से मुस्कुराकर मिलने का। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी पत्ती और ढेर सारा प्यार, लो बन गई चाय और सवर गया इतवार।

0: चाय रिश्ते बनाती है। किसी नए मेहमान के आने पर और बताइए से पहले जो चीज टेबल पर आती है ना, वो चाय ही है। उदासी में दिलासा, खुशी में जश्न और अकेलेपन में सबसे सच्ची साथी, बस एक कप चाय। तो देर किस बात की श्रोताओं, अगर आपके हाथ में भी इस वक्त चाय का प्याला है तो उसकी एक चुस्की लीजिए और अपने जिंदगी के किसी हसीन लम्हे को याद कीजिए इस नगमे के साथ।
1: Not bad. अब ये सुनो।

चाय की चुस्कियों के साथ अपनों को वक्त देते रहिए, क्योंकि जिंदगी भी चाय जैसी ही है। जितनी धीमी आंच पर पकेगी उतना ही स्वाद देगी। इसी के साथ श्रोताओं, दीजिए मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय उछला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा व साथियों की आवाज में।

आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 9 बजे हैं, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। आज ही के दिन 1905 में देश के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी।

0: इस अवसर पर आज वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: जयपुर में भी बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राज्य के हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जवाहर कला केंद्र में 9 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और बुनकरों को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर करौली जिले की खादी और हथकरघा परम्परा को भी याद किया जा रहा है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि इस ने स्वतंत्रता आंदोलन से ग्रामीण आजीविका तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1928 में करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंगीलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को स्थानीय हथकरघे से निर्मित खादी वस्त्र भेंट किए थे, जिसकी गांधी जी ने सराहना की थी। जिले में दशकों से बुनकर परिवार चरखे और हथकरघे के माध्यम से आजीविका चला रहे हैं, लेकिन मशीनीकरण, आधुनिक तकनीक और बदलते बाजार के कारण यह पारंपरिक उद्योग अब सीमित होता जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग का संदेश दिया जा रहा है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज जयपुर में होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। इस संशोधन के बाद सरकार को यूपीआई और अन्य अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर आवश्यकतानुसार शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था तैयार करना और बैंकों तथा भुगतान सेवा प्रदाताओं को मजबूत करना है। संशोधन के तहत यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लेने संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम जारी है। जयपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जिससे चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जैसलमेर जिले में भी चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कल एक बैठक ली जिसमें निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रकोष्ठों की कार्य प्रगति, जिम्मेदारियों, संसाधनों की उपलब्धता, विभागीय समन्वय तथा आगामी कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। राज्य

0: निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर के राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, मतदाता जागरूकता और मतदान के महत्व पर विचार साझा करेंगे। ये राज्य का पहला अवसर होगा जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी में नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति और विकसित भारत पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले राज्यपाल ने कल डूंगरपुर जिले के आदिवासी गांव देवलखास में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई स्थानों पर कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी जयपुर में भी कुछ इलाकों में रिमझिम बरसात हुई। भरतपुर के नदबई, वैर, रूपवास, रूदावल और उज्जैन में बरसात से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर बंद बारेठा के कैचमेंट एरिया में बरसात से जलस्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर बढ़ने पर बांध के गेट खोले जा सकते हैं। उधर शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। इससे हनुमानगढ़ के धान उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है। वहीं कोटपूतली, बहरोड, नीमराणा, बांसूर और विराटनगर में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिणी जिलों और कुछ पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट है। उपमुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति देश भर में उल्लेखनीय बनी हुई है। उन्होंने कल जयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पोड़वाल के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पोड़वाल के गाए कुछ नगमे।

आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में ये नगमा कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें

0: कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज के अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थी, अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे

0: क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
1: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है?
2: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
1: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप, ये कपड़े हमने कब पहने थे?
0: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
1: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
2: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
1: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
0: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
0: नाना जी पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
3: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है, देखो पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
0: अच्छा,
3: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
2: मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
0: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
0: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष?
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है?
4: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा,
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है, हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है, उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा,
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा,
4: और हाँ

0: अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोदकर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी करुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा, सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने तो देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों बताइए श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है श्रावण का तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा जी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है,
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती है ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल, जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिन के साथ, और जो लिसनर है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा, ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है, और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा, चाहे वो यहाँ का डल लेक हो या यहाँ की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत पानी आया था, तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत गंभीर बात हो गई, तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है, और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा,
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए ये जो क्लाइमेट है हमें उनके लिए बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके, और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है मैं ना बोलूंगा मैं ना बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटोक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैडम।
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा अभी है, बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सती सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला नाचने वो उठाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ रहता है ना। और महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी।
1: हिंदी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, हजारा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर की आवाज में सिंगल फिल्म।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह ढील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: बरसात तो हो रही थी। बरसात?
0: अच्छा,
1: बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी, बढ़िया होने वाली है। बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात को।
1: हाँ, सुंदर लग रहा है। अभी मैं मक्का खेत में कॉल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे खेत की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ, उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पे थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहले आप मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते हैं गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस। इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे अच्छे गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का, धान, सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा। तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है, उसमें लाते हैं गत्ता बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज़ भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो वेबर भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तान का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ। मैडम जी, आपसे तो पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे, इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए, आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमार, सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया, गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में? वहीं रहते हैं आप?
1: यहाँ लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं, अभी तो पास में ही है अपना खेत पे जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर? कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते हैं, चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आके इसमें क्या मेरी कथा है जी वाला।
0: अरे, कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप? कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए तो 90 के दशक की गीत पसंद करता हूँ मुझे, मान लिया। हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए, मान लिया हमने। ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो, मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रही है?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे, बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारे शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम, तो बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है? क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी, श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी। बहुत अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर। बहुत अच्छा लगता है दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कांवड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से। उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलाहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का?
1: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे, कौन सी पेंटिंग?
1: मैं ये बॉल पेंटिंग दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं, लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है सुल्ताना रे, उसमें अंतरा बहुत अच्छा है दीदी।
2: बलम बबुआ बेदल दी सावन।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए,
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे ऐसे श्रोता हमें कहाँ मिलेंगे?
1: कैसा है, भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर? झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
0: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: उसके बाद जो नारियल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: करती का बारिश बोलते।
0: अच्छा,
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है भीमाशंकर पुणे बम्बई कोकण, वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
0: समझ गई मैं।

0: इधर बोले तो ये माथे पे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
0: रहता है। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है रीत रिवाज, वो चलते आने वाला रीत रिवाज से चल पाए, उसकी मर्जी भी अगर कुछ होता नहीं।
1: क्या बात कही,
0: मराठी मध्ये एक अभंग है, अरे अरे माणूस साधू वेणा का खोळा रे, तेव्हा पुढे माणूस पाला पातोळा रे, घडी नाही कुणाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिला।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घडी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से
0: तुमको बोलू गए सिलोन बाल का रेडू था, उसके बाद वी धरती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे
1: जी।
0: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, तुम्हारा सवा छेकु भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं,
1: बहुत सुंदर,
0: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
1: जी। बिल्कुल, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत हमें, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साईं बाबा का।
1: अरे वाह, कौन सा?
0: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिमरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है।
1: क्या ड्यूटी पीरियड क्या कह रहे हैं आप?
0: मैं एसएससीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में, लाइव में, ईमेल में, और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग, और गीत की बोल है मस्तों का झूल, और गायक है दिव्या कुमार।
1: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
0: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
1: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है, और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
0: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल किया है, सूर्य की रोशनी है, बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
1: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867000

0: 08 दूसरा नंबर 02-2400024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

आप सुन रहे थे जसवंत सिंह की आवाज में ये गजल कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 11:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह का सीधा सजीव प्रसारण।

0: 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्ति और संगठन को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है 1 सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुनाई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल, मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35

0: black persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, "We celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations," unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित हैं। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती है। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूशरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और

0: कश्मीर का पश्मीना इस सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं वो कताई रंगाई बुनाई डिजाइनिंग और विपणन हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you're absolutely right. And today the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninir Rashtrapati Ji, Evam Manch Parviraje Vishisht Atitigan. Aaj 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, devio aur sajjano, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka

0: स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। द हैंडलूम सेक्टर, अ कस्टोडियन ऑफ आर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: को। हेलो हेलो, देख रहे हो
2: कैसे बादल जैसे लाइट लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूँ।
3: आप बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 1.5 lakh weavers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta aur global bazaar ke anurup taiyar kiye gaye designs, while digital cataloging and e-commerce platforms are connecting looms in remote villages directly to customers across the world. QR-based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi implement

0: एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है। आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे। थैंक यू। जय हिंद।
1: थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म वेलकम एड्रेस। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के इस समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ। बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विचित्र खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रोनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये ज्वाइंट अवार्ड है। और इसी ज्वाइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक ज्वाइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत।

0: कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी ज्वाइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम। हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sari, and to Shri Shyam Humban Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sari. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Chaudhary of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari. Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari. Shri Abhinav Bashak of West Bengal for the Khadi Muslim Jamdani Sari. Shri Prafulla Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari. Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari, and Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India has been presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector, and the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Chaudhary.
1: All right, time to get one NRI task done.
0: I'm
1: going out.
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraji of Andhra Pradesh for the Katan Tushar half and half Jamalai Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the
2: Ikat
0: Guldasta Jamdani Sadi. We have the Union Minister for Textiles, Sri Pavitra
2: Margarita. पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा, आपकी सादगी, संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है. True credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first

0: to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aaiye hum sab milkar ye sankalp lein ki hamare bunkaron ko samman, pehchan aur naye avsar nirantar milte rahe tatha hamare bunkaron dwara buna gaye pratyek dhaga vikshit Bharat ke sapne ko aur adhik sashakt kare. Dhanyawad, Jai Hind.
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद. और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को. माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं. मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम सम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं. जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया. नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं. ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम

0: मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: And we are bringing you the National Handloom Awards from the Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: जब 10 साल बाद आता तो 43 लाख और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं, संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे? तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने, विभाग ने, हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अप स्किलिंग करते हैं। अप स्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है अभी।

0: 25 से 30 हजार रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं। 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून चौथा जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे, लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया। 35 लाख आए, लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए विभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि विभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है, आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCS से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता, तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम विभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किए हैं, अभी 100 विभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, विभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा, AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: हरियाणा में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

0: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
1: और जो मेरा लक्ष्य है पच लखिया भाई और बहन बनाना, दस लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: देखिए देखिए, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम हो। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुराकार डिजाइनर देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसमें हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के समर्थन भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से

0: सम्मति थे। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसीओ छी नुआ जुगांतर गांधी कही छंती बोली बारबर, खाओ भात मुठे घरो ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, फिर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तोहफे, तो यहीं पे तो शौक है। हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजन संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ गुणकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी नहीं, आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं सुबारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों गुणकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। गुणकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही है,
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है।

देवी और स्वजनों, हमारे हथकोता सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय

0: निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरिफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल्स क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है, इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सर्व और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवा एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शहसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है, लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
4: तेरे इश्क में पड़ जाते,
3: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
5: ओके टिको, ओके टिको, बर्फ बदन है।
3: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
6: मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
3: जी,
6: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
3: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
7: निकला वो गड्डी लेके
3: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। शोक अदाओं के

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपी की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नरानिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन भले ही हमने किया हो, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा खेल आप सभी के साथ गीतों के साथ हम खेलते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए आज के गीतों की झलक साझा आपसे करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। ये है इस सफर की खास बात। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ देते हैं आज की इबारत यानी टेक्स्ट। सावन के झूले पड़े भीगी भीगी रातों में भी पिया अनजान है सपनों की सूखी फुलवारी, तन में पिया दिन भर मुझे यूं सताए, दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाए, दर्पण में देखूं जिसे वो सपने सच्चे लगने लगे, शाम सवेरे दिल में तू रहता है, तुझसा दिल का हंसी पहले देखा कहां, दिल ने कहा नहीं माना और एतबार कर लिया, यानी कहा ना माना और दिल ने एतबार कर लिया, बेखुदी में आ गए पास हम और अब ना होंगे जुदा। तो ये थी हमारी आज की इबारत। इनसे जुड़े कई कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले पड़ चुके हैं लेकिन प्रेमी पिया अनजान है और दिल के सपनों की सूखी फुलवारी ने उम्मीद और अरमान को निराशा से भर दिया है, फिर भी दो नैनों ने जो ख्वाबों की महफिल सजाई है उसमें प्यार की रोशनी धीरे से जगमगाई है जिससे दिल को एतबार हो गया कि अब वो फिर से जुदा नहीं होंगे। सूखी फुलबारी यानी निराशा के बावजूद नए सपने सजाना यानी कि मन में आशा रखना, मन की अदम्य प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं अनजानेपन के बाद भी दिल का एतबार करना प्रेम की सहज और पवित्र प्रकृति को उजागर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की बारिश का एक अजीब सा स्वभाव है, यह हमेशा बाहर नहीं बरसती, अक्सर भीतर भी भिगाती रहती है। झूले डलते तो हैं पेड़ों पर लेकिन झूलता मन है, दर्पण में चेहरा अपना दिखाई देता है मगर

आंखें किसी और की परछाई ओढ़ लेती है। ख्वाब भी बड़ी खामोशी से आकर दिल के आंगन में बैठ जाते हैं और एक अनकहा नाम पूरे दिन सांसों में गूंजता रहता है। फिर एक दिन दिल बिना किसी दलील के यकीन कर लेता है कि मोहब्बत का रास्ता मंजिल से नहीं इंतजार से होकर गुजरता है। सावन हर साल लौट आता है यह याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, उन्हें छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कितनी सुंदर बात आपने कही है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये सावन जो है ऋतु नहीं, हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है। झूलों की रुनझुन, भीगी रातों की नमी, दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल, सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो पहले एहसास बनकर उतरता है, फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहां विरह भी मधुर है, प्रतीक्षा भी सुंदर, क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहां मिलन से पहले स्मृतियां साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है। एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के साथ साथ महकाता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है सफर का आपके लिए, जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है आरजी बर्मन ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो, या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है, हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन की झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली हैं, लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी, क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहां से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी, तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से इन्हें इंतजार है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं, ऐसी ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियां और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके

गांव मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं? क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियां, अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो? तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए।

अब देखिए सावन की भीगी भीगी रातें प्रेम की दिल में दस्तक दे रही हैं। ये दस्तक सुनकर किसी का साथ याद आने लगता है, तो कभी किसी से हुई प्यारी सी मुलाकात याद हो आती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं, आज का सुरीला सफर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुली गाड़ी में हवाओं के साथ बातें करते हुए फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हों। गानों के मुखड़ों को इबारत के रूप में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं। बस इन गानों के बजने का इंतजार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया है। इतना जरूर है कि सभी गाने सभी के पसंद के होंगे, तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल, एक श्रोता कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुरीला सफर में सावन छाया हुआ है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सावन सभी मौसम ऐसा लगता है। और ऐसे में हम जैसे संगीत प्रेमियों के मन में सावन के कई गीत उमड़ने लगते हैं, तो इन्होंने एक गीत लिखा है, नींद की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंद।

प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदें सुरीला सफर में जुड़ जाने का समय होते ही पास आ गए हम, क्या बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने हमारी ही इबारत को अपने अंदाज में लिख दिया है, और सावन में रिमझिम फुहारों की बूंद में जब पिया की याद आती है और हसीन ख्वाबों में डूब जाते हैं, मिलन की आस जाग उठती है कि तुम आ जाओ और फिर जुदा न होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत तड़पाते हैं, और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को और बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदे मन में ठंडक की बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपना पिया मिलन की पुरानी यादों को ये मौसम जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ती घुमड़ती काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। बिल्कुल ये मौसम है ही प्यार का। श्रोताओं, जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन्हें याद रखते हुए आप हमें संदेश भेजते रहिए, हमें आपके संदेशों का बेसब्री से रहता है इंतजार। आपकी ये अनमोल यादें हम तक उस वक्त की भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू पहुंचा रही है, सावन की फुहारों के साथ।

और अब आ रहा है अगला गीत। स्वामी फिल्म से लता मंगेशकर का गाया। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया।

0: वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आ रही,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: श्रोताओं, प्रेम की कोमल अनुभूतियों को हम शब्दों में कह नहीं पाते, पर ये गीत सब कुछ कह जाते हैं। गीत कितना अच्छा माध्यम है ना प्रेम को व्यक्त करने का। अच्छा बताइए, अगर गीत ना होती तो कैसा होता जीवन, प्रेम का इजहार कैसे होता, और सावन के मौसम में गीत ही नहीं सुने सुनाए जाते तो कैसा होता सावन, ये बताते चलिए। फिलहाल हम लेते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता कहते हैं कि आज अनूठे पद्यांश को पिया मिलन की आस के साथ पिरोया गया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब पिया मिलन की आस जागती है तो मन का हर कोना पुलकित हो उठता है। प्रकृति जहां ठंडी बूंदों से भीग रही होती है, वहीं प्रेमी का मन मिलन की उत्कंठा में सुलग रहा होता है। बरसती बूंदों में छुपा है सदियों का इंतजार, बाहर सावन की फुहार है, भीतर विरह की आग। ये कजरारी रातें और ये रिमझिम सा सावन, सावन तो आ गया बस तुम रह गए हो जाने कहां, क्या बात है। ऐसे ही अगले श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत एक गजब इबारत है, कभी सावन से पिया अनजान है तो कभी भीगी रात तो कभी सूखी फुलवारी। इस तरह से उन्होंने हमारी ही इबारत को अपने शब्दों में पिरोया है। और हमारे और श्रोता जो कह रहे हैं कि दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर कार्यक्रम ये चल रहा है, और एक श्रोता ने इतनी प्यारी बात कही है कि मेरी प्यारी प्यारी विविध भारती को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद दूर, यूं तो हमने लाख चैनल सुने हैं विविध भारती सा नहीं सुना, ये बारिश तो सिर्फ 4 महीने होगी, क्या बात है। बस सावन के गीत आपको विविध भारती पर सुनने को मिलते ही रहेंगे, है ना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है, बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है, दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है, वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात?

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

होने लगती हैं, होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी सुरीली, सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है? लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला। इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत। सुनिए ये गीत।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी बातें जब होती

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने

का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का, क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती, मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूं कश्मीर में, क्या बात है, वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहां बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितनी भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताजा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के तीन लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजनू सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

दीदी से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। संदेश के लिए तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी। यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं, ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है, बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है, इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है, ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है, भूपेन हजारिका का संगीत बत्ती।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतु चक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के दिल की बात घर से दूर प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज हर गीत मोती की माला सभी सॉन्ग कुछ यादें ताजा हो गई है उनकी ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी एक श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं। और उन्होंने ये गीत लिखा है, अब आपको सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूं आपसे विदा। जी नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस

0: बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्ध मोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदनलाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। इन शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदनलाल ढींगरा लिखते हैं।

0: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारत वर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
1: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमा गातामारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाहु अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमा गातामारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द

0: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
1: दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बरकले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
0: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे, वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्वयात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जय

स्वीकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलन सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के एआर रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
5: आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय

0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृहमंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम के कई लिए के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने

0: कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

0: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवाज से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा की आवाज से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
2: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: शोक अदाओं के साथ फिरते कदम तेरे इश्क में पड़ जाते पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
1: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, रोशन का संगीत।

0: और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब

0: अंदाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से
3: अभिजीत और उसके बनने की दास्तान।
4: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल OP नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश।
1: वंदे मातरम।
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के एआर रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: सदाबहार नगमे की ये आखिरी प्रस्तुति है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है आया सावन झूम के। इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार। हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं दिया मां मुन्ना बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: पहलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी,
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ। आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है
0: जी,
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा
0: जी। दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसा है, रिमझिम बारिश है।
0: और सावन में झूला झूलना ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम, हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार।
0: हाँ जी,
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे।
0: अच्छा,
1: और बहुत मजा आता था
0: जी। अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा, दिया जी आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: तुम्हें

0: वेलकम सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ।
0: कहाँ से?
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में जी।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अभी तो स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी। एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल
0: जी,
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे। यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: लगी कैसी ये अगन, ला ला ला ला ला ला ला। लगी स्मिटन जी,
0: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ।
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी।
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती।
0: अच्छा।
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को।
0: जी जी जी।
1: वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, 3 जन है। बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती।
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: रेडियो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जिस हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। पर जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी, मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा।

0: आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा अच्छा तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़ी।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी है तो उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है
0: जी। अच्छा ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी, वाह क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।

0: हाँ
1: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
0: मोगरा।
1: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
0: हाँ
1: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
0: गुलाब, मोगरा, जाइजी।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी।
0: हाँ
1: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
0: हम आपके हैं कौन में से हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हम

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ, भोपाल से सहेली।
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रोग्राम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती हैं,
1: है ना? दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनती थी, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना
0: जी,
1: तो हरियाली में वही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित पटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी
0: जी।
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना।
0: क्या बात है, मतलब 1970s की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना।

सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002462, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम

0: कार्यक्रम से अनुमति स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादो ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,

पीछे पीछे सपनों के भागे तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों का राही चला जाए सपना।

0: चले जाए अकेले कहां जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हूं ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन?
2: पहचाना नहीं?
1: मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष?
2: बिल्कुल सही। तो तुम्हें याद हूं मैं?
1: कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं।
2: अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं।
1: आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया।
2: भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है?
1: निमिष ने पूछा।
2: उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया।
1: यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है।
2: और ये किस महापुरुष ने कहा है?
1: निमिष ने झट से पूछा।
2: ये एक महान स्त्री ने कहा है,
1: स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया।
2: हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं।
1: निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया।
2: अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है?
1: निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे,

0: इतना ही मानवता के लिए काफी है।
1: भाई मेरी तो अरेंज मैरिज है,
0: निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं।
1: नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता।
0: निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की?
1: स्वाति ने उत्सुकता से पूछा।
0: हाँ किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ।
1: उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया।
0: इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हो या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, न अपने परिवार में न ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो, मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं। निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातों नहीं हूं, मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हाँ, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती, स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं।

अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

0: निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था। उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

0: माँ का दूध भी लेता रहे और ऊपर का खाना भी जो घर वाले खाएं वो खा सके। पर सामान्यतः बच्चे को अच्छा पोषण देने के लिए 1.5 से 2 साल की उम्र तक माँ को दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ में और दूसरी चीजें भी देनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये हम कह सकते हैं कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि जब प्राचीन समय में भी माताएं स्तनपान कराती थी, लेकिन आजकल एक मिथ्यता कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती है या लेडीज होती है वो बच्चों को दूध पिलाना कम पसंद करती है, फिटिंग कराना नहीं चाहती है, तो इस उस संबंध में भी आप हमारी बहन
0: तो हमारे बांसवाड़ा जिले की जो ग्रामीण बहनें हैं उनमें तो ये समस्या नहीं है। ये शहर की पढ़ी लिखी है जो अपने आप को समझदार समझती हैं पर काम ऐसा मूर्खता जैसा करती हैं, उनमें ये बात है। तो उनको पता होना चाहिए कि माँ का दूध पिलाने से शरीर का सौंदर्य भी बिगड़ता नहीं है, उल्टा मुख में तेज आता है, चार्म आता है और उनके माँ और बच्चे का इवन बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है और माँ और बच्चे के बीच में जो अच्छी बॉन्ड बनती है वो उनके भविष्य के दोनों के जीवन के लिए उपयोगी है और शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, ये गलत फहमी है।
1: बिल्कुल, कई बार उनकी मिथ्यता यही होती है कि इसे फिगर बिगड़ जाता है, ये बिल्कुल माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाना पसंद नहीं करती है।
0: ये एक निरर्थक बात है और गलत है और विज्ञान सम्मत नहीं है और इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारी बहनों को दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बहनें जो है वो इसको सुनकर अवश्य ही इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं।
0: कहना चाहूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: देखिए, ये पूरी दुनिया में सब जगह से करते हैं और कहते हैं कि अभी भी बहुत सारी मौतें, अगर सबको पहले दिन पहले घंटे से ही माँ का दूध मिले तो दुनिया भर में 5,40,000 के करीब मौतें बच सकती हैं। और दूसरा ये बताया है अभी उन्होंने डेटा कि स्तनपान को प्रमोट करने के लिए भी अपने को पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे आप आकाशवाणी से ये वार्ता प्रसारित करेंगी तो मेहनत कर रही हैं, आप कर रही हैं, आकाशवाणी प्रसारित करती है, अपना भी खर्चा होता है, पर वो खर्चा उपयोगी है बहुत। अगर आज हम 1 रुपया स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए खर्च करते हैं तो वो भविष्य में 59 रुपए 60 रुपए की बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रख के बचत करता है। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है आजकल का नया फैशन वो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है और ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी चाहिए ये भी बता रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित माता, गोद राखी पुनी हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जनु पाई। अयोध्या कांड का 51वां श्लोक है ये कि माता बार बार राम जी का मुख चूम रही है

0: राखि पुनी हृदय लगाए स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई रंग धनद पद भी जनुपाई। अयोध्या कांड का 51वां श्लोक है ये कि माता बार बार राम जी का मुख चूम रही है और नेत्रों में प्रेम का जल भरा आया है और सब अंग पुलकित हो गए। वास्तव में ऐसा होता है, माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है और मुख चूमती है ना, तो वो सही तरीका, उससे जो दूध उतर आता है। बहुत से माताओं को आजकल ये है कि हमारे को दूध ही नहीं उतर रहा, क्या करें, इसलिए ऊपर का पिला रही हैं। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दूध कैसे उतरता है, ये सब चीजें करने से होता है। और फिर राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लेती हैं और फिर क्या करती हैं कौशल्या माता, सुंदर रतन प्रेम रस दूध बहने लगे। जब इस तरह से प्रेम से देखती हैं, मुख चूमती हैं, अपने निपल बच्चे के मुंह में देती हैं, तो और बच्चे को शरीर से, मतलब बच्चे का पेट और माँ का पेट परस्पर कांटेक्ट में रहता है, तो दूध अपने आप निकल आता है। और वो जो आनंद है, उस प्रेम और महान आनंद को कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पार लिया हो, ऐसी माँ को उसमें आनंद की अनुभूति होती है।
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारी बहनों को दी और उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें इसे अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मैनो, आइए रुक करते हैं फिर से चर्चा की ओर। विषय है, बारिश के मौसम में त्वचा की देखभाल किस प्रकार की जाए। बहनों, बरसात के मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है और इसी कारण त्वचा चिपचिपी हो जाती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहासे या फंगल संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। इस मौसम में त्वचा को साफ, हल्का और हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। बात करेंगे हम त्वचा की सफाई किस प्रकार कर सकते हैं या अपनी त्वचा को किस प्रकार साफ रख सकते हैं। बहनों, दिन में 2 बार चेहरे को क्लींजर, जेल या फेस वॉश से अवश्य धोते रहें। उससे नमी आपकी निकलती रहेगी और चिपचिपापन आपके चेहरे पर नहीं आएगा। अगर बारिश में आप भीग गए हैं तो त्वचा को तुरंत साफ पानी से धोकर सुखाएं। सैलिसिलिक एसिड युक्त फेस वॉश, अतिरिक्त तेल जो कि पिंपल्स को रोकने में मददगार साबित होता है, आप अवश्य ही लगाते रहें। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 बार हल्का स्क्रब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी त्वचा ज्यादा ऑयली है तो आप हल्का कभी एक आध बार और भी कर सकते हैं। बादल होने पर भी सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि यूवी किरणें बादलों को पार कर लेती हैं और हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाती है। बात करें, पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमारी शरीर की त्वचा और हमारा शरीर स्वयं भी अंदर से हाइड्रेटेड रहे। तो बहनों, ये तो थी चर्चा बारिश के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे करें विषय पर। और आइए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, बातें तो हम आपसे और भी बहुत सी करना चाह रहे हैं, लेकिन घड़ी पर नजर जाए तो पता चलता है कि कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी बहन तस्लीम को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी नारी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 होने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने, बस कुछ ही पलों के बाद।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए ये बताना चाहते हैं कि आज फिल्मकार जी ओम प्रकाश जी की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपकी कसम फिल्म का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आया सावन झूम के फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं पे नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने और अभी आपको सुनवा रहे हैं इसमें जी ओम प्रकाश फिल्मकार की फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत।

0: 18 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिसमें हम सुन रहे थे पुण्यतिथि पर फिल्मकार जी ओम प्रकाश की फिल्मों के चुनिंदा गीत, और अब पार्श्वगायक सुरेश वाडकर के जन्मदिवस पर उनकी आवाज में कुछ गीत आपको सुनवाते हैं।

विधाता फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनवर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

रंगीला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है महबूब के भूल, ए आर रहमान का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। समाचार अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेसवार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेसवार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही

0: तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के चार जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: परिंदा फिल्म का ये गीत आपने सुना। आशा भोसले, सुरेश वाडकर की आवाजें थी। खुर्शीद हल्लौरी ने इसे लिखा और राहुल देवर्मन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
4: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
3: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरहने नए पुराने।

0: सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा की आवाजों में ताल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, ए आर रहमान ने संगीत से सजाया।
1: शोक अदाओं के साथ फिरकते कदम पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला तो गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम, के सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

0: आ रहे हैं विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता टाक की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म मैंने प्यार क्यों किया।

हैं प्यार क्यों किया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और जयेश गांधी के साथ, अमृता काक की आवाजें, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का तराने में पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और एमएसएमई के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी। कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत की प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बुनकर बरीगा राम को खास किस्म वाली पट्टू साड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक बुनाई तकनीक और बेहतरीन डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हाथ से बने प्रत्येक वस्त्र की अपनी अलग पहचान होती है और उसके प्रत्येक रेशे के साथ एक प्रेरक कहानी जुड़ी होती है। यही कारण है कि आज विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड भी भारतीय बुनकरों के साथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अवसर पर जयपुर के नेशनल हैंडलूम में पहुंचे और हथकरघा उत्पादों का अवलोकन करते हुए खरीदारी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत हथकरघा उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया।
2: देखिए, आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट है निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता

2026 के अंतर्गत आज जयपुर में 16वीं ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। बैठक में बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने, एमएसएमई के अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यापार वित्त तक उनकी पहुंच बढ़ाने तथा डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए विकासोन्मुख, नियम आधारित और सर्वसम्मति पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक भंडारण से जुड़े विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया गया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किसानों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने वाले कई निर्णय रहे। बैठक में ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 को भी अंतिम रूप दिया गया। इस रणनीति को सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतम राम मांझी ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन बैठकों में किए गए फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है और केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं से शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से कोटपुतली बहरोड के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 154 युवाओं को प्राथमिक स्तर पर रोजगार के लिए चयन किया गया। उधर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से 14 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले मेले में 30 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी, जो इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने मेले में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए QR कोड जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अभियान के प्रदेश संयोजक और भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम ने बताया कि तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक जाएगी। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे 9 से 17 अगस्त तक सभी मंडलों, कार्यशालाओं, स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगा। अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज भी

0: प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे 9 से 17 अगस्त तक सभी मंडलों, कार्यशालाओं, स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगा। अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज भी मौसम सक्रिय रहने से कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। भरतपुर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं तेज वर्षा हुई, वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभागों में मध्यम से हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, टोंक, चूरू सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बरसात हुई। डीग से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हुई है।
1: तीन जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है, साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दी।
0: मौसम विभाग ने कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं कई अन्य जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य के पूर्वी इलाकों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी का कोटा पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से प्रदेश में बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और एमएसएमई के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी। कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जुलाई महीने में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे का दौरा किया। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, चिकित्सा, खेल और पार्वती बांध से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर संतों, महंतों और गुरुओं का सम्मान किया गया। तीर्थराज मचकुंड में विशेष धार्मिक आयोजन और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में मन दर्पण 2 अभियान शुरू किया गया है। अभियान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या रोकथाम के लिए 5 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की 4 बालिका कैडेट्स ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय बालिका राष्ट्रीय एकता एवं ट्रैकिंग शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय की टीम ने 11 में से 9 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कैडेट्स ने कई कठिन हिमालयी ट्रैक सफलतापूर्वक पूरे किए। चंबल नदी के कटरा घाट पर इन दिनों नन्हे घड़ियाल

0: प्रकृति प्रेमियों का आकर्षण बने हुए हैं। हालांकि अंडों से निकलने के बाद मॉनसून के दौरान चंबल नदी का तेज बहाव इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश घड़ियाल शावक मॉनसून की पहली तेज बरसात में ही बह जाते हैं। उधर मचकुंड क्षेत्र के लौंगपुर पहाड़ पर पैंथर की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद वन विभाग ने निगरानी चौकी स्थापित की है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में जिले में मॉनसून की पहली अच्छी बारिश दर्ज की गई। धौलपुर शहर में लगभग 45 मिलीमीटर और जिले में औसतन 70 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसानों ने खरीफ फसलों के लिए इसे लाभदायक बताया। जिले में इन दिनों ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के फॉलो अप शिविर लगाए गए हैं। इससे पहले लगाए गए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और आमजन को दिए जा रहे लाभों की समीक्षा की गई और शिविरों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया। राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति की ओर से भरतपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई में धौलपुर जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने समिति के सामने अपने कई सुझाव रखे। आगरा रेल मंडल की मेरी सहेली योजना के तहत अकेली यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 3 महीनों में इस योजना के माध्यम से लगभग 64,800 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए केंद्रीय अधिकारिता प्राप्त समिति ने धौलपुर और मुरैना क्षेत्र की निगरानी चौकियों का निरीक्षण किया। समिति ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हाई रेंज सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालिका जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तसीमों के फुटबॉल ग्राउंड पर खेला गया। फाइनल मुकाबला धौलपुर और उदयपुर के बीच हुआ। धौलपुर ने पेनल्टी शूट के बाद मिले सडन डेथ में 1-0 से उदयपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर और पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो, हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके के आयोजन। जयपुर में आए ब्रिक्स देशाना वाणिज्य मंत्रिया ने मीटिंग पूरी हुई। किसाना और एमएसएमई रा भला ने बधावो देवणो जुड़िया कई फैसला में थे सहमति। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नौजवानों नशों दूर रहर सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। हर प्रदेश घनखड़ हल्का माए चौमासारी चोखी बिरखा। काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि हथकरघा हलको केवल कमाई रो जरियो नहीं है बल्कि सगला विकास रो मजबूत माध्यम है। वे आज नई दिल्ली में राखी जिया 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में बोल रही हैं। राष्ट्रपति कहो कि हजारों बरसाओं हथकरघो भारत री संस्कृति और सभ्यता रो अटूट हिस्सो रहो है। वे कहो कि ओहलको देश री समृद्ध विरासत न हेर राखण सगे नौकरी धंधा महिलावां ने मजबूत बनावण कला संस्कृति और कुदरत प्रेम नई बधावो दिनो है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: कार्यक्रम में

0: राष्ट्रपति साल 2025 रा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार देर कारीगरां ने नवाजा। बाड़मेर जिला रा बुनकर बरीगा राम ने खास किस्म वाली पट्टू साड़ी री बेहतरीन बुनाई और डिजाइन सारू राष्ट्रीय पुरस्कार देर नवाजी चियो। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रा मौका बुनकर सेवा केंद्र री ओर राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में रखी चियो। इनमें उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि हाथ री कारीगरी बनाई जा हर कपड़ा री न्यारी पहचान वह है। वह बेहतरीन काम करण वाला बुनकरा ने राज्य स्तर रा बुनकर पुरस्कार देर नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा नेशनल हैंडलूम में हथकरघा माथे बनाई जा कपड़ा ने निरख्या और खरीददारी कीनी। खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका वह जनताओं वोकल फॉर लोकल रातेत हथकरघा रा जरिए बनाई जा सामान री खरीदी री अरज कीनी।
1: देखिए आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
0: ब्रिक्स देशों की भारत री सदारत में होने वाली मीटिंग पहली आन देशों रा वाणिज्य मंत्रियों री सोलहवीं मीटिंग आज जयपुर में पूरी हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल री सदारत में हुई मीटिंग में ब्रिक्स सदस्य देशों रा व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल दुनिया की बदलती कारोबारी व्यवस्था बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली ने मजबूत बनावण वैश्विक मूल्य श्रृंखला ने बत्ती लचीली बनावण एमएसएमई इकाइयां ने दुनिया रो बाजार मुहैया करावण व्यापार वित्त ताई वाणी पहुंच और डिजिटल सेवावां ने बढ़ावो देवण सरीखा खास मुद्दा मथे चर्चा कीनी। मीटिंग में विश्व व्यापार संगठन ने केंद्र में राखता थका विकास वाली नियम आधारित और सगणा ने एक राय माथे आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली री प्रतिबद्धता दोहराई ची। मीटिंग री खास उपलब्धि किसाना और एमएसएमई कारोबारियां ना भला ना बधावो देवन वाला फैसला रही। मीटिंग में एमएसएमई सारू व्यापार वित्त ना आसान बनावण वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मदद बधावण कारोबार में जुड़िया कागजात ने डिजिटल बनावण और सरहद पार डिजिटल सेवावां ने बधावो देवण जुड़ी कार्य योजनावां ने मंजूरी दीरी ची। इस आगे ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 नई अंतिम रूप दियो चियो जिनमें आवता महीना नई दिल्ली में होवण वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की मंजूरी सारू पेश करी जावेला। संसद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 पास करती नो है। वो बिल राज्यसभा सोमवार न पास करती नो हो। लोकसभा री कार्रवाई एक बार टणे पाछे पाछे शुरू हुए ताई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी वो बिल पेश कीनो। इनरो मकसद एमएसएमई इकाइया ने चुकारा माए मोड़ो भेवन ने दूर करनो और झगड़ा रा निपटारा रा काम ने आसान बनावनो है। आज जयपुर माए राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत माए हुई मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। आ फैसला री जानकारी मंत्रिमंडल रा सदस्य खबर नवीसा ने देवेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रहर स्वस्थ और सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो है। वह आज बांसवाड़ा जिला रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राखी जी राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहा है। श्री बागड़े खास तौर जनजातीय हलका रा नौजवानों बनाई लिखाई खेल और रचनात्मक कामाऊ जोड़र समाज और देश बनावन रा काम माए योगदान देवन बाबत कहो। इन्हों पहली राज्यपाल जिला कलेक्टर एसपी और दूजा अहलकारों सागे मीटिंग कीनी। वह नशा मुक्ति टीबी री बीमारी खत्म करण और विकास और जनता रा भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा कीनी। इन्हों पहली राज्यपाल सर्किट हाउस में एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत

0: सभा रोपया। भारतीय जनता पार्टी कानून चलाई चिया हर घर तिरंगा अभियान राते जयपुर में ईद इतवार ने तिरंगा यात्रा निकाली जावेला। अभियान रा प्रदेश संयोजक और भाजपा रा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम बतायो कि तिरंगा यात्रा समारोह 9 बजे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में बड़ी चौपड़ ताई निकाली जावेला। तिरंगा यात्रा में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत जनता रा नुमाइंदा और जनता शामिल फैला। उत्तर पश्चिम रेलवे री ओर हुई 9-17 अगस्त ताई सगड़ा मंडला टेसना और रेलवे रा प्रतिष्ठाना में हर घर तिरंगा कार्यक्रम रखा जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा घणखर हलका में आज ही चोखो में बरसियो। भरतपुर और जयपुर संभाग में कठा कठा तेज बारिश हुई। कोटा अजमेर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश दर्ज करी ची। राजधानी जयपुर में आखा दिन रिमझिम बारिश चलती रही। सवाई माधोपुर दौसा भरतपुर अलवर टोंक और चूरू समेत कई जिला में बरसात रा समाचार है। वहीं डीग खबर नवीस बतायो कि जिला में भया चोखा में कई ठोणा पानी भर गयो।
1: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है। साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: मौसम विभाग काल झुंझुनू और सीकर माए जोरदार बिरखा वेवन सारू चेतायो है जबकि दूजा जिला सारू भारी बारिश रो अनुमान है। महकमारा मुजब आवता एक सप्ताह ताई राज्य रा उगली हल्का माए चौमा सारी बिरखा चालती रहवन रा आसार है। लाडला दिना पूरा फ्यार राष्ट्रमंडल खेलां री मुक्केबाजी होड़ माए भारत ने सोना रो तमगो दिरावन वाली अरुंधति चौधरी रो वाना शहर कोटा पुगण पर जोरदार स्वागत करी चियो। अरुंधति दूरदर्शन सागे बातचीत करता थका कहो के एक बेटी रे सोनारो तमगो जीतनो महिलाओं रा मान जुड़ी सोच बदल रही है।
2: मुझे ये था कि पहला कॉमनवेल्थ का मेरा और मैं पहला ही गोल्ड लेकर आऊंगी और मेरी टीम फाइट हुई। तीनों ओपोनेंट मेरी बहुत अच्छी थी। दो मेरे लिए थोड़ी टफ रही क्योंकि वो मेरे गेम के अपोजिट थी तो उनसे खेलना मेरे लिए एक चैलेंज रहा। लेकिन जो फाइनल बाउट जिनसे हुई इंग्लैंड से उनका गेम काफी टेक्निकल था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल के। राजस्थान के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लड़कियों पे बंदिश है पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन से जयपुर से कोटा तक का जो मेरा सफर था उसमें एक लड़की के मेडल का ही जश्न मनाया जा रहा था तो मुझे खुशी है कि लोगों की सोच बदल रही है और गेम्स को भी इम्पोर्टेंस मिल रही है।
0: चूरू में आज स्कूल बसों की औचक जांच करी जी। इस दौरान स्कूल बसों और दूजी बाल वाहिनियों में गाड़ी री फिटनेस जरूरी कागजात लाए बुझावन जुड़िया सामान शुरुआती इलाज रा सामान मुश्किल वगत माई गाड़ी में बाहर निकलवा रा दरूजा गाड़ी रा बुतारा मुजब इन माई बैठन वाला विद्यार्थियों री तादाद और गाड़ी माथा जरूरी जानकारियां मांडन री जांच करी जी। जांच रे दौरान 4 गाड़ियां रा चालान करी जिया। सीकर माई फतेहपुर रोड माथा नुओ आधार सेवा केंद्र खोलो जावेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय काल इनरो उद्घाटन करेला। इनु सीकर और RSR रा हलका ने जनता ने आधार नामांकन समेत बायोमेट्रिक अपडेट सेवा एक ही ठौड़ मिल सकेला। कोटपुतली बहरोड़ री सरकारी ITI में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग री ओर रोजगार मेलो लगाई चियो। मेला में 154 नौजवानों ने नौकरी रा प्रस्ताव दिया चिया। हनुमानगढ़ में जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय री ओर 14 अगस्त में रोजगार मेलो लगायो जावेला। राजीव गांधी स्टेडियम में रखा जावन वाला ही मेला में 30-32 कंपनियां नौजवानों ने नौकरी रा मौका देवेला। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव मेला में ऑनलाइन पंजीकरण सारू QR कोड जारी कीनो है। भारत आवता साल पहला ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव री मेजबानी करेला। आज मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार रे दौरान इनो ऐलान करी चियो। फिल्म और मनोरंजन हलका में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने मजबूत बनावन रा मकसद कई करार रोई ऐलान करी चियो। आखिर में खास समाचार एक फेरू सुनी।

0: कराओ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश माई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके के आयोजन जयपुर माई ब्रिक्स देशा रा वाणिज्य मंत्रियां नी मीटिंग पूरी हुई। किसाना और एमएसएमई रा भला ने बधाओ देवणो जुड़िया के फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रह सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। और प्रदेश रा घनखर हल्का माए चौमासारी चौखी बिरखा काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: एफएम इंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम हमारा वाला सब किसान भाई ने बोले धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाई ने बोले सब खेती बाड़ी नो काम काज करवा में लगे था कहा केम के अपने जे भी खरीफ नी फसल नी अपने बुआई कर रखी है इनी हार अंबर करवानो समय है। अपने आ धीरे धीरे थोड़ो थोड़ो जीव पानी जुए वो पड़ी रू तक है ने मन अपने हरू भरू जी अपने खेती बाड़ी में अपने मन भी वो थी रू तक है क्योंकि अपने जीवी फसल दीगी ने अपने लगी रू ना अच्छी फसल है अपने वही मेहनत करी रहे वो पाकी ने अपने मन लगा पर अपने आ समय में लगातार पानी वगैरह पड़ी जाए तो खास करीने आपने ध्यान रखो विशेष करीने के जी जंगली पौधा वगैरह लगवा खूब थी गया था कहीं ने अपने जी पोषक तत्व अपने खेती बाड़ी मलवा जुए वो ने मले बड़वार मलवी जुए बड़वार नती मली थी ने खत पत्व खूब थी रू तक अपने खेती बाड़ी में तो खास एनी हार हंबर कर दें जी जंगली पौधा वगैरह उगी रहा है भी साफ सफाई करता रही क्योंकि टेम टेम में था कार्यक्रम माध्यम थी आप कही रहा कि जे भी काम है खेती बाड़ी नु अपने ध्यान देखी सावधानी देखी करव जरूरी है क्योंकि आप कोई भी जल्दबाजी करेगा नुकसान थी सके एट्ले अपने खरीफ नी फसल में जी कही रहा भाई मक्की है सोयाबीन है धान नी फसल वगैरह कर रखी है ने घना भाई शाक सब्जी वगैरह कर रखी है क्योंकि पहले घना भाई शाक सब्जी खूब कम करता था पर अब ये शाक सब्जी भी एक तरह की नकदी फसल कहवा में कि भाई तैयार थी जाए महीना बे महीना में फल लगभग तैयार थी जाए तो एक तरह थी कि जो रोज ना अपना काम ही इन थी भाई अपना घर नु गुजारो कर सके ने अपने कही सकते कि भाई नवी तकनीकी नु जमानो आ गयो तो अपना जी अनाज वगैरह बुआई करो तो तीन महीना चार महीना में पाकवा पाकी नहीं घेरा आवे ने पसे अपने कई भी मले नहीं मले एटले चार महीने नी वाट जोवी पड़े पर इन हाथे आ शाक सब्जी वालों या फूलनी खेती वाली सब्जी वगैरह है तो इन्हें अनुसार ही भाई काम करेगा तो बढ़िया रहेगा। हमें तो हर तरह की हमें पहले तो यू हतु कि ना भाई आने सीजन में सा सब्जी वगैरह थाय अब तेवी सब्जी एवं थी गई है कि बार महीने बतरी घड़ी आ शाक भाजी वालू काम चाली रू तक है ने आ शाक सब्जी वालू है दलहन है ये फसले जी ही ये अपने रोज ने जी अपने बर्बाद उठे ही ते लगाई अपने देखो रोज खावा भी जुए पीवा जुए फरवा जुए एमने भाई हर तरह थी कि शाक भाजी नो तो काम अपने उपयोग करव पड़े तो इन अपने इन सब्जी उगाड़ी रहता कहीं ने घना भाई है कि नहीं भाई तैयार करीने पेशी आवे फिर नवी खत्म थी जाए नवी फिर फल सब्जी वगैरह ने पौधा में रोप तैयार कर लगाड़ दी ने वो तो खूब तरह नु आ काम करी रहे खूब जागरूक भी थी गए ने हर तरह थे कि आप ट्रेनिंग ने माध्यम थी कि आना कार्यक्रम ने माध्यम थी कि एक बीजा थे कि जुड़ेता कर रहे हैं तो आप नवी नवी जानकारी मिले तो इनने देखी भी बहने ने भाई ने जागरूक करे कि ना भाई मुंह भी आ काम करूंगा कितलो बढ़िया रहे ना आजकल में भी हमने तेना ज आवा करे तो देखा कि सब भाई ने बोने पहले तो भाई से अपने खेती बाड़ी ने देखाता था अब तो वधारे भाई ने देखाता बोने से खेती बाड़ी ने देखा भाई एक एक नौकरी करवा सलाह जाए बोने ही इजी आ खेती बाड़ी में है खेती बाड़ी ने हाथ पशुधन वगैरह भी राखी रही थी किए तो ये पूरा ध्यान राखी रही थी किए इन भाई मेहनत करी रही थी किए तो आजकल देखो बहने खूब काम आ गए घर परिवार भी हमारू घर ने

0: के पशुपालन हमारू के जाऊ अब व्यवहार करवा हर तरह थे इनमें की जागरूक रहे ने आजकल तापे बातचीत कर एक बीजा थे की जुड़े तो कर तो अपने नवी नवी जानकारी मिल रहे तो इन्हें हाथे हाथे पास मु भी एक जगह गई थी ना बो सुखी दीदी मिली गई मैंने नहीं करी जैन देखियो तो भाई खेतीवाड़ी भी काम कर खास कर ऑर्गेनिक खाद जो देशी खाद वगैरह बढ़ा भी देते कहीं ती भी बढ़ा भी देती की बकरी पाली थी की गाय भैंस भी है नहीं है तो दौड़ो उनमें निकली जाए ने बे पैसा कमाई रहता कहीं तो कितना बढ़िया काम काज करी रहे एटले आजकल हम पहले कोई कहीं काम नहीं है तू ना हम कहो कि भाई काम ज काम है कोई भी वो कोई काम नानू नहीं रहते कि अंदर खेती बाड़ी में हाथ या पशुधन जुड़े तक कहीं तो एक भी होते कि बे पैसा कमाई रहता कहीं नहीं मुझे पशुधन गोबर वगैरह है इनते की आज ये खातर वगैरह बढ़ाई रहे पास खातर वैसा भी काम करी रहता कहीं तो इनने थी कि अपने बात थी थी तो पहले इनकी बात हमारा ने पसे आगाड़ी बात करें थोड़ा संदेश भी अभी पड़े तो संदेश भी हम लोग ने पसे आगाड़ी बात करूंगा। राम राम
1: राम राम।
0: तुम्हारा नाम हुआ?
1: मा नाम सुखी मकवाणा टाडी मौड़ी तकी।
0: टाडी मौड़ी तकी। आजकल हूँ काम काज करी रहो?
1: आजकल कई नहीं मैडम खेती बाड़ी जैविक खेती बारा में कई खेती बाड़ी कोई पशु चक्की बारा पशु बारा जानकारी आला कृषि चक्की बारा खेती जैविक खेती माते बाते वरण समूह वाले नहीं सब्जी वाले सब ने हम जाड़ा।
0: हाँ हाँ तो आजकल तुम्हारे खेती बाड़ी में हूँ काम काज करी रहता कहो ई वरण बता लो। हाँ आजकल हूँ काम काज करी रहो?
1: आजकल मैडम कई नहीं खेती नो काम करी रिया है ने अवे सब्जी की लगाड़ी है लौकी भिंडी वैसे पपीता।
0: अच्छा। हमें
1: हाँ
0: अच्छा पपीता वगैरह भी कर रही है।
1: हाँ, देसी खेत खातर थे कि पपीता सब्जी मिर्ची टमाटर।
0: अच्छा हाँ। तो मतलब देखो आप 12 महीने जी आपने साग भाजी साल ले ये साग सब्जी कर रखी है तमे।
1: हाँ, सब सब्जी ने
0: अब तुम पहले खेतीवाड़ी में हूँ मक्की बुआई करी है
1: मक्की सोयाबीन कपा।
0: अच्छा हाँ। कपास वगैरह सब कर रखी हुआ?
1: हाँ, सब थोड़ा थोड़ा सब करी रखी।
0: अच्छा किम थोड़ा थोड़ा एटले सब में कमी थी जाए अपने एक में कम मल तो बीजा में पूरु थी सके
1: अपने बीजा में फायदो मिली सके
0: खरी बात घणो बढ़िया काम करी तक ते तो आटलो काम कर मन भी थी गये हाँ कितलो बढ़िया थी रू तक आ शाक सब्जी वालू काम तो एवं है कि आप 12 महीने बतरी घड़ी खावा वालू पास तब खावा में भी उपयोग लो के वैसी सावो
1: नही हमें भी खा ने वैसा भी थोड़ी बहुत बसी खसी जाते थोड़ी बहुत वैसा ने घरे साली जाए ने
0: बिल्कुल देखो आजकल हर तरह ने अपन कमाव भी जरूरी है ने बे पैसों अपन फायदो भी राखो जरूरी है।
1: हाँ, बे पैसों मिली जाते अपने घर नो रोजी रोटी साली करे
0: मैं पास तो है कि भाई तुम कही रहो भाई मु आ खातर वगैरह बनाओ एम हमरियो तो खरी बात है पास।
1: हाँ, ई बात बराबर मैडम खरी बात जैविक खातर वर्मी कम्पोस्ट करीने ई गेरेनस गाय नो गोबर।
0: हाँ
1: हाँ निमड़ा नी पत्तिया।
0: हाँ
1: हाँ अन्य पेड़ों नी पत्तिया ये सब मिलावट करीने केचुआ नाखी नी खातर गोबर वालों वर्मी कम्पोस्ट खातर ई बनायू है घेरे।
0: अच्छा हाँ। तो कितलो का बना भी रखे तो वैसा काम भी करी रहो ये भी व्यवस्था होगा पसो
1: ये भी वैसा मैडम ने हमारे घेरे भी खेतर में ने सब्जी में ने फल फूल में ये भी दड़ा ने ये वैसा भी कई काम राजविका थे कि मेला लागे दाणा में जाने कोई ऑर्डर आले दे नहीं आला 5 किलो 10 किलो ही।
0: अच्छा तमे ऑर्डर माते भी आलो ने तम कही रहा भाई आ साग सब्जी माते ने तम खेती बाड़ी में जी घर में करी रहे तक होता है पूरी इनती की ऑर्गेनिक खाद के साथ तुम काम काज करी रहो?
1: हाँ ऑर्गेनिक खाद के।
0: अच्छा पेलू खातर नहीं नाखता?
1: ना पेलू खातर नहीं नाखता।
0: अच्छा तो इनती की तुम्हारा फायदो होगा?
1: फायदो थी रियो बीमारी नहीं आती है ज्यादा एकदम पशु भी स्वस्थ रहे और हमें भी केरे सब्जी खा तो ई भी हमारे भी सब्जी भी स्वस्थ
0: अच्छी स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य भले नुकसान नहीं है
1: कि स्वादिष्ट भी रहे
0: टेस्ट में तो फर्क है स्वादिष्ट रहे पहला वैसे ताण में तो पेलो खातर नु भरतु को रहे तो आपने खावा में हवा जीव नहीं
1: लगे
0: ताण में तो हवा भी रहे पास आपने व्यस्त होगा तो बे पैसे वे
1: भी
0: मिलता होगा
1: जैविक इमकान ऑर्गेनिक ये सब्जी इमकान बे पैसो खुश थे नाल दे हमें वालों ग्राहक
0: खरी बात देखो आजकल तो देखो स्वास्थ्य है तो सब काम अच्छू है नहीं तो बीमार थी गए अपने पास पैसो है ने स्वास्थ्य अच्छू नहीं तो हूँ काम आवे एटले स्वास्थ्य ने बदले तो अपने हर तरह ने आपे तो तेरा खेती बाड़ी करवा वाला किसान भाई बहने तो आप तो खूब ध्यान रखू पड़े आप खुद नु भी ने आप जी देखो तुम आटली शाक सब्जी है अनाज वगैरह फ्रूट्स वगैरह उगाड़ी रहो।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रत्येक देखो किसान भाई बहनों, आंसू की दीदी कितनी बढ़िया जानकारी आली ना पे क्यूस के। देखो कितलो साग सब्जी ने, मुर्गी पालन ने, बकरी पालन ने, हर तरह की काम काज करी रहे थे कहीं। तो अपने बहने अब देखो वाई नहीं रही, हर तरह की जागरूकी ने इस के हुआ कि ना देखो हर काम में नानू मोटू काई नहीं रहे, तू सब काम अच्छो रहे, खाली अपनी मेहनत करनी पड़े ने अपनी इच्छा जागरूक करनी पड़े कि ना भाई मु आ काम करी सको। देखो हिकवान भी कई उम्र नहीं, नानू सोरो ए भी हिकी सके ने 80 वर्ष मुझे बुजुर्ग व्यक्ति थी जाए तो ये भी चाहे कि ना भाई मु भी हिकी मारा कहीं काम करू मार फरू तो ये भी करी सके। तो कितलो बढ़िया आ काम करी रहे कहीं ने, खास आप कही रहे भाई ऑर्गेनिक खाद वगैरह बनाई रहे कहीं सब बहने हमरी भी होगा भाई ये भी वैसा नो काम करे या मेरा वगैरह लागे तो इनमें भी जाए, घरे भी कोई लेवा आवे करे तो इनमें भी वैसे। देखो जो आ खातर वगैरह है ये अपने स्वास्थ्य बल्ले भी अच्छे है, अपने जी अनाज वगैरह फल सब्जी उगाड़ी रहता कहा तो इनमें अपने देखो नवी नवी घनी तरह की बीमारी निकली रही थी। तो आपने खास कही देखो भाई स्वास्थ्य अच्छू है तो सब काम अच्छू है, एट्ले अपने पहले सुख है निरोगी काया ने बीजू सुख है घर की माया, एट्ले घर की माया ने बनाई रखवा बदले अपने पहला सुख न खूब ध्यान रखू है। तो अपने इन बदले खावा पीवा रहू साफ सफाई नु विशेष ध्यान रखू है ने खास कर आ बहने है तो बहने ने भी जान राखू जरूरी है कि जानकारी कि हर तरह की अपने जितना अपने स्वस्थ रहूंगा एटू अपने घर परिवार अच्छो रहेगा ने अपने थोड़ो लापरवाही कर दीदी खावा पीवा साफ सफाई नी तो अपने हर घर परिवार में समस्या आवी जाएगा ने अपने छुट्टी ने कई काम नहीं करेंगे तो घर अस्त व्यस्त थी जाएगा। एटले खास कर कार्यक्रम के माध्यम थी किस कहू कि देखो आप खेतीवाड़ी नु पशुपालन नु हर तरह नु ध्यान राखी रहता कहा पर आपने खुद ने भी ध्यान रखू जरूरी है केम के देखो हर तरह की जिम्मेदारी कही रहता कहा ने अपने आ खेतीवाड़ी नु काम कर अच्छे आ फल सब्जी अनाज वगैरह उगाड़ी रहा तो पहले तो अपने खुद ने खावा में भी लेवाए अपने विचार करो ना भाई आटलू उग्यू ना कहीं आटलू तैयार कर बेसी आऊंगा भाई पैसों आवेगा तो अपने घर नो गुजारो साली जाएगा। पर इन्हें हाथे आ काम है कि ना भाई स्वास्थ्य नु खावा पीवा नु हर तरह की जानकारी में राखी ने ध्यान में राखी ने तो आप काम काज करेंगा बढ़िया रहेगा। खास अवड़ी देखो कई सी रहे कि भाई आज फल सब्जी अनाज वगैरह है उगाड़ी रखे है तो मौसम धीरे धीरे बदलाई जाए तो इन्हें कारण घना तरह ना कीट वगैरह थे तो अपने खास कर जी कीट कपास वगैरह लगाई रखा है तो कपास में जी मुख्य कीट है इन्हें रोग लक्षण की भी बात कर दो कि भाई टाइम टाइम में अपने आने कार्यक्रम में नवी नवी जानकारी आला सके ना भाई आ कोई कीट लगवा संभावना तो आ दवाई वगैरह लगाड़ी सके आ करेंगे तो आछू रहेगा क्योंकि हर तरह की अपने ध्यान रखू जरूरी है क्योंकि अपनी फसल नानी फसल है ने इन कारण अपने ध्यान रखू है ने खास कर लगातार पानी वगैरह पड़ी करे तो कई दरेन अभियान भी है कि भाई वर्षा जल नु संचय करव भी जरूरी है क्योंकि एक अभियान भी है ने अपने कही सके वधारे पानी ये भी नुकसान है कम पानी रहे ये भी नुकसान है तो अपने इन बात है कि भाई जी भी आ खाडा वगैरह थी रहता कहू भराई रहता कहू नानी फसल डूबी रही थी कि वो पीरी पड़ी जाएगा तो ये नुकसान करी जाएगा तो जे जल निकासी नु विशेष प्रबंध कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अपने खेतर ने सारे खूणों में अच्छा ओंडा ओंडा खाडा कर दो तो जी जल निकास में एक नाली वगैरह है ये सब थी कि इन्हें खाडा में भराई रहेगा कारण अभी कमी भी थी कि भाई पानी नहीं पड़ू तो फिर खाड़ा में देखिए अपने पानी की आवश्यकता हो तो इन उपयोग भी कर सको एटले खास इन भी अपने ध्यान रखू है ने अपने कही सकते कपास वगैरह में मुख्य रोग वगैरह भी थी जी तो इन भी अपने ध्यान रखू जरूरी है तो इन रोग है बेक्टेरियल वाइट कर कोणी पत्ती धब्बा कहवा पत्ती पाते कोणी कारा कारा भूरा रंग धब्बा पड़ी जाए ने नसा माते संक्रमण तक की काली पड़ी जाए तो इन भी अपने ध्यान रखू है। फ्यूजरियम मिल्टाइम करें जिन्हें उल्टा रोग भी कहें आ फूफत जनित रोग है इन्हें पौधा अचानक पीला पड़ी जी ने मुरझाई जी तो इनमें भी अपन लगेगा फिर अनु मुख्य रोग ना लक्षण की बात करी रहता कहें। अल्टोनिय पत्ती झुलसा जिन्हें पत्ती में माता हल्का भूरा रंग ने गोला छलका

छब्बा छब्बा बन जाए तो इन देखी पत्तिया हुकई ने जड़ी जाए तो इन्हें भी अपने ध्यान रखू है। बाकी कपास में पत्ती मरोड़ वायरस कहवा जे लिंक कर लगा इन्हें भी पत्ती ने नए से तके अंगूड़ी जी ये मुठी जी पत्तिया रही इनमें हरा रंग में वृद्धि देगा कि ना भी मुरझी मुरझी जो जड़ी पत्ती हर को देखे या मुरझाई जाए तो आ कपास में मरोड़ वायरस भी थी सके। इतना आप कही सी कि कोई भी मौसम वगैरह बदलाव करे तो आपने एकदम देखिए इनमें समस्या आई सके तो अपने हर बात नु ध्यान रखू है कि देखो आ फसल है खास अपने पशुधन है अपने स्वास्थ्य है ने आ मौसम है तो आप बरसात ने मौसम में हर तरह की आप बीमारी वगैरह भी थी जीव जानवर नो भी डर रहे ने हर तरह की वायरल जी कई रंग के अन्य फैली जाए सर्दी जुकाम बुखार।

देखो किसान भाई में ना आटी बढ़िया आपने भजन हमरे लिए दो नाले बातचीत भी कर दी थी पर बात करवानी इच्छा भी होता पर आ टाइम नु मान रखो पड़े आज तो आप सुटा पड़ा ने अगला कार्यक्रम में फिर मलंगा राम राम राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाढ़ उड़ीकता सगला काशकार भया ने और ढाणिया में काम करती मरी सगली बहनावा ने मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा और विशाल भाई सा थाने भी ओजू खूब खूब राम राम।
1: हाँ राम राम मनस्वनी बहन और सगला खेतीबाड़ी श्रोताओ ने घना घना राम राम सा।
0: भाई साहब देखो है ना काल मार के एक फोन आयो।
1: हाँ।
0: फोन आयो तो पहली तो वो यहाँ नॉर्मल आयो और फिर ना वो आजकल वो जो ऐप चाले ना जी पे आप मैसेज करा हाँ चैट करा हाँ 201 फोन आयो मार के ना।
1: हाँ।
0: वीडियो कॉल कीजिए हाँ जी मैं आप वो एक फोन हो जी मैं आप तस्वीर भी देख सका सामने वाला ना भी देख सका। हाँ वो फोन आयो भाई साहब और फोन आया फिर मैं मने यह केबल आ गया कि मैं ना पुलिस अधिकारी बोल रही हूँ कमिश्नर बोल रही हूँ और ना थाने ई जुर्म में गिरफ्तार क्यों जा रहे है और थे यो फोन को निकाल सको और तने थाने अत्ता पिसा थे ई नंबरा पे अगर डालोला और यो ओटीपी मने बताओला तो थाने जमानत दे दी जाओली। भाई साहब मैं तो घनो डरबगी भाई साहब यो के है भाई साहब
1: वो तो डिजिटल अरेस्ट तो कोनी हो कटी
0: यो डिजिटल अरेस्ट के हुआ करे भाई साहब।
1: देखो आजकल कई सारा फ्रॉड करबा लाग गया है जगह ठग हुआ ना जगह खुद ने पुलिस सीबीआई और ईडी के नाम आपने अधिकारी बता हैर कई लोगन घरां कैद कर ले होना पर मजबूर करे बाऊ लाख रुपए ऐट लिया करे। और देखो डिजिटल अरेस्ट में ये लोग क्या काम करे है आजकल जे थे बताओ ताकि फोन आयो ऑनलाइन की तरह वो धोखाधड़ी करया करे और आदमी ने अतो डरा दे जे थे काल डर गया थे बता रहे हो।
0: हाँ
1: तो बरार बेबागों में रुपया हेठन को काम करे है तो भाई से थे कहीं करियो
0: भाई साहब वो तो पुलिस की वर्दी जैसा कपड़ा भी पहन मिला।
1: हाँ तो बे सगला ऑनलाइन फ्रॉड आजकल ये उबल आ गया है तो घर में कैद कर थागनो रुपया हेठन चाह तो वो
0: भाई साहब थे सही बताया अब बना जो डिजिटल अरेस्ट की जो प्रक्रिया हो जा करे ना इना का करे सामने वालों ठगी कर बाड़ो जो चोर या करे वो अपन एक वीडियो कॉल करे और वीडियो कॉल के माध्यम से वो अपना आपने बड़ो पुलिस को अधिकारी या बड़ो कोई सरकारी अधिकारी बता और आपने वो जो फोन हो है, जो कॉल हो है, वो भी काटवा को नहीं दे और आपने सु तरह तरह का सवाल करे आपने डरावे धमकावे या अपना परिजना के नाम पर आपने धमकी देवे और डिजिटल अरेस्ट यो ई को नाम यहाँ पड़ियो कि वो आपने घर में आर कोई ताड़ा कूची को नहीं लगा जावे वो आपने फोन के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से आपने बीम फसार रखे की आते ही ने डिजिटल अरेस्ट किया करे है काल तो मैं बेजा डर गी।
1: देखो अब मैं थाको डर निकालू भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई व्यवस्था है ही कोन्या कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर कोई नहीं गिरफ्तार नहीं कर सके है और ना ही कैमरा ऑन रखना को दबाव बना सके और आपना प्रधानमंत्री जी कई बार मन की बात पर भी कह चुके हैं कि ई फ्रॉड के प्रति अपन सज्जत रहना चाहिए और आप भी बोल रहे हैं कि जांच एजेंसी फोन पर पैसा कभी कौन मांगे।
0: और भाई साहब जब यहाँ कोई फोन आवे जी मार्कन काल आयो तो ई की आप रपट कड़ा लिखावा।
1: देखो रिपोर्ट तो थे बाद में लिखाई जो इन पहला थे रुको थोड़ो सोचो हर बी के बाद में एक्शन था नहीं लेनू है पहला तो थे कॉल न काटो तुरंत वो जगह को फोन है भी को तुरंत फोन काट दो क्योंकि ये जगह वीडियो कॉल कर बड़ा हुआ है ठग हुआ है हर ई वीडियो कॉल पर एक ढंग डराया जी थे बताया पुलिस वाला बनर या आजकल जज भी बन जाए कई लोग हर लोगन डराने लगे तो अपन बिना डरे कॉल काट दे आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं कोनी देनी है जहाँ ताकनु काल ओटीपी मांगे आते थे बताए ओटीपी थे कोनी दिया तो बहुत ही बड़ा समझदारी को काम करियो क्योंकि आपने बैंक को खातो ओटीपी आपना आधार नंबर ये आपने कदी नहीं देना चीज है और बाद में अगर कोई पैसा मांगे है तो आपन बने कोई भी पैसा नहीं देना चीज है और कोई भी अधिकारी हुए तो बिन आपन फोन पर तुरंत पैसा वो कोनी मांगिया करे और आकी अगर जो थे बता रहे हो कि खटा पर शिकायत करा तो आपने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है भी के ऊपर आप शिकायत कर सका या फिर आप कॉल कर सका 1930 नंबर हमारे।
0: भाई साहब थे तो गणित चौकी बात बताया अब तो मैं आ नंबर पर और यो नेशनल

0: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट पर जा जरूर मारी शिकायत ने दर्ज कराऊ ली और सगड़ा श्रोतागणा ने भी यही कहबो चाहू ली कि देखो आप डिजिटल तो बना, आधुनिक तो बना, खूब अच्छो स्मार्टफोन भी चलावा, लेकिन ऐसा ठगसू और ऐसी धोखा देड़ी सू अपना आपने बचा रखा सा।
1: बिल्कुल, तो अब आप ती चौकी जानकारी दी, अब आप एक सुना जानकारी स्वरूप गीत।
0: हाँ जरूर, चौको से लोक गीत सुनाओ भाई साहब।

आ तो चोखो लोकगीत तो भाई साहब ते सुना दिया, अब आपने कार्यक्रम ने ले चाला जानकारी री ओर। तो जानकारी देबा के खातिर आपने स्टूडियो माई पधार चुकिया है रेशमा यादव।

0: જી ઓર આ સે જાણકારી આપણે દિલાવલા દોલત ભાઈ સા તો સંભળાવા આને બાગડોર ઓર લેવાયા જાણકારી
1: લેવા સા
2: આકાશવાણી કા એક ખાસ કાર્યક્રમ ને આગે બઢાવા રેશમા યાદવ પીએચડી સ્કોલર હૈ ચોમું સુ પધાર્યા હૈ ઓર યહાં સુ બાતચીત કરાલા ઘર પર યા છત પર બાગવાની કયા કરા રેશમા યાદવ સબમે પહેલે કાર્યક્રમ મે સ્વાગત કાર્યક્રમ મે આપ આયા છત પર બાગવાની કી જબ ભી બાત કરા તો કેવા કો મતલબ હે કી ઘર કી છત પર સબ્જિયાં યા ફળ ફૂલ ઉગાવા કી જગહ પર બાત કરા તો કુન કુન સા ફળ કુન કુન સા પેડ પૌધા આપ ઉગા સકા ઘર કી છત પર
3: જૈસે કી મોસમી સબ્જિયાં મેઇનલી જો લગાઈ જા સકતી હૈ જૈસે કી હરી સબ્જિયાં હો ગઈ ધનિયા હો ગયા પાલક હો ગયા મેથી હો ગઈ ફલી વાલી સબ્જિયાં હો ગઈ ગવાર ફલી હો ગઈ મૂંગ મોઠ ઓર જૈસે કી ભિંડી टमाटर मिर्च बैंगन बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी हो गई तुरई करेला वगैरह और जैसे कि नींबू अमरूद पपीता अंगूर ये भी मतलब गमलों में अच्छे से उगा सकते हैं छत पर। इसके साथ ही फूल जैसे कि गेंदा गुलाब चंपा ये आदि उगाकर भी अपन जैसे घर की छत की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल आज का ये भागदौड़ भरी जिंदगी में या बाजार में मिलावटी दौर की जद भी बात करा तो आप यह सोचा कि क्यों ना आपा के घर की ही सब्जियां आपा खा लिया, लेकिन शहरा में देखा या जटे जमीन कम है या गांव में भी जो दूर दराज खेता में ना जाके कोशिश करे कि घर पे ही कुछ उगा लें। और अब आप बता दी कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी फल सब्जियां आप उगा सका फल फूल वगैरह, मतलब कि अगर कोई सब्जियां उगानी चाहे तो सामान्य से मिर्ची टमाटर बैंगन कद्दू लौकी जो आप नाम बताया शुरुआती क्योंकि छत आपा सोचा कि छत पे की तरीका सो मिट्टी रेवेली की तरीका सो पानी रेवेला और की तरीका सो आपा चीजा कराला तो शुरुआत काई काई चीजा की जरूरत पड़े और मेरी शुरुआत की तरीका करा
3: छत पर खेती करने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वो चीज है ग्रो बैग हो गए गमले हो गए और जैसे कि पुराने ड्रम या लकड़ी के बक्से भी हम गमलों की जगह यूज में ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें जरूरत होगी हल्की और उपजाऊ मिट्टी की जिसमें गोबर की खाद अच्छे से मिली हो कोकोपीट या बालू मिट्टी अच्छे से मिली हुई हो ताकि वो गमलों में इजीली जमे नहीं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी कि पानी की अच्छी सुविधा हो और अच्छी किस्म के बीज और पौधे हमारे पास हो और सबसे जरूरी चीज ये है कि छत पर अच्छी धूप आनी चाहिए। कम से कम पौधों को 5 से 6 घंटे की धूप है जो रेगुलर मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि जो गमले हम काम में लेते हैं उन गमलों में मिट्टी कैसे भरे। तो सबसे पहले गमलों में मिट्टी भरने के लिए उनके नीचे छोटे छोटे पत्थर हो गए ईंट के टुकड़े हो गए इन सब चीजों को डालना चाहिए ताकि पानी जो है रिस कर और छत पे सीधा पानी नहीं जाए। इससे पहले जरूरी है कि छत पर छत जो है उसको कवर किया हुआ होना चाहिए। डायरेक्ट पानी उसमें रिसना नहीं चाहिए ऐसा कोई मटेरियल छत के ऊपर जैसे टाइल हो गई या और कुछ पन्नी वगैरह ये मटेरियल उस पे होना चाहिए। अब बात आती है गमलों को भरने की। उनके नीचे जैसे मिट्टी या कोई मोटे छोटे छोटे पत्थर वगैरह ये सब जमा के और जो मिश्रण हम तैयार करेंगे गमलों में भरने के लिए वो होगा मिट्टी और उसके अंदर मिक्स करेंगे गोबर की खाद या कंपोस्ट रेत या बजरी जो हो गई और उसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद ये सब मिक्स
2: को मतलब गमलों या पर जो भी ट्रे है नीचे बिना अच्छी तरह से जड़ा पहुंच जाए भी हिसाब चाहे कंकर पत्थर डालो चाहे बजरी डालो या दूसरी चीजा से थोड़ा सा उभार ले लो और फिर ऊपर उपजाऊ मिट्टी जो है वो डाल करके और खाद डाल करके आप अभी ने उगा सका। तो बागवानी अगर आप छत पे कर रिया हाँ तो नर्सरी से ला सका आप जितना भी पौधा वगैरह है।
3: हाँ जी
2: तो नर्सरी से पौधा लिया या जो आप ट्रे वगैरह है ग्रो बैग वगैरह छत पे पूरे तैयार कर लियो आप बच्चे अपन काई काई करवा की जरूरत है क्योंकि छत पे पौधा आप अगर लगा दिया तो बाकी देखभाल है खेत वाली की तरीका से क्योंकि खेत को तरीको एक अलग है। जब आप छत पे बागवानी कर रहे हैं तो बाकी देखभाल है वह की तरीका सु खास करा जिसों की गमला के मायने या ट्रे के मायने कोई नर्सरी सु आप पौधा भी लिया या लगा भी दिया खास करके मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां हैं जो भी फूल है जो भी फला की सब्जियां हैं लगा दी। अब नर्सरी सु रोपाई के बाद की तरीका से देखभाल करवा की जरूरत है।
3: जी सर, सबसे पहले जरूरी होगा कि पौधों को

0: बहुत कम पानी देने से भी दिक्कत हो जाती है, जैसे ज्यादा पानी देने से उसमें कवक लग जाती है और पानी नहीं निकल पाता है, तो जड़े जो है उसकी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि पौधों को पानी कितना दे और कब दे, इस चीज का जो है पता होना सबसे जरूरी है। जैसे कि गर्मियों के टाइम में सुबह और शाम के टाइम पानी देना जरूरी है, साथ ही जैसे सर्दियों में 2-3 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं। और पानी देने के लिए या तो ड्रिप इरिगेशन या प्लास्टिक की जो बोतल होती है उससे बूंद बूंद पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। और बरसात का मौसम हो तो ज्यादा पानी अगर गमलों में हो तो उसको निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छे से बनी रहे। इसके साथ ही जरूरी है कि जैसे खाद जो उसमें यूज करते हैं अपन, तो रासायनिक खाद का यूज नहीं करके घर पर ही बनी हुई खाद का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि घर का निकला हुआ किचन वेस्ट हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, पत्ते हो गए पेड़ पौधों के, इन सबको गोबर के साथ मिक्स करके एक ड्रम या गड्ढे में डालकर 2-3 महीनों तक छोड़ देना चाहिए, जिससे यह खुद ही कंपोस्ट बन जाएगा। और इसको पौधों में यूज करने से बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं और साथ ही साथ रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक चीज और है कि जैसे छत पर बागवानी करेंगे तो जरूरी ये है कि जैसे कि कीट और रोग आ जाते हैं तो उन चीजों का इलाज कैसे करें, तो कीट और रोगों के लिए भी हम जो है रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज नहीं करके हम जैविक तरीके से ही उपाय अपनाते हैं, जैसे कि नीम की पत्तियों का रस हो गया, नीम की खली का घोल छिड़क सकते हैं, गौमूत्र, लहसुन और मिर्च के मिश्रण का स्प्रे किया जा सकता है, यदि कीड़े ज्यादा हो तो साबुन के पानी का भी हल्का छिड़काव किया जा सकता है, इससे भी कीट नियंत्रित होते हैं और फल सब्जियां पूरी तरह से सुरक्षित भी होते हैं। जैसे कि बाजार से लाई हुई सब्जियों में रसायन आदि का छिड़काव होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, और इसी तरीके से हम घर पर जैविक तरीके से छत पर बागवानी कर सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है।
1: छत पर बागवानी ज्ञान कराई विषय पर बातचीत कर रहे हैं रेशमा यादव जी। एक सवाल की ओर, आप तो लगभग सी पूरी जानकारी अच्छे तरीका से दे दी, फिर भी जो छत पर बागवानी कर रहा है वहाँ का फायदा थोड़ा सा समझा दियो ताकि भी चर्चा ने आगे बढ़ाऊ।
0: छत पर बागवानी करना आज के समय में एक बहुत बड़ी जरूरत सी बन गई है। तो छत पर बागवानी के हम फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा ये है कि यह छोटी जगह में भी सुविधा देता है, और जैसे परिवार को ताजी फल सब्जियां आसानी से घर पर ही मिल जाती है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण तो शुद्ध रहता ही है, छत का तापमान भी नियंत्रित रहता है, और यह छत पर बागवानी का जो विषय है वो बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और खेती का अनुभव देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके साथ ही शहरों में जहां जमीन की कमी होती है वहां भी छत का उपयोग खेती के लिए एक अच्छा विकल्प है।
1: तो बड़ी स्थिति में बात करा तो कई लोग शहर के मायने छत पर बागवानी करे है, फल फूल सब्जियां उगावे, लेकिन जो लोग सोच रहे अभी तक कर लिया खेती या बागवानी पे ही सब्जियां उगा लें, खर्च ने लेर थोड़ा सा चिंतित रहे, तो कितो का ही खर्चो इनमें आ जावे और की तरीका से इन्हें आगे मेंटेन रखवा की जरूरत पड़े, थोड़ा खर्च के बारे में बता दियो एक बार।
0: तो देखिए, किसान भाई सोचते हैं कि छत पर बागवानी करना एक अलग विषय है तो उनको एक भ्रम होता है कि इसमें बहुत ही बड़ा खर्चा आता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे शुरुआत में थोड़ा सा खर्च आता है जो किसमें आता है, जैसे गमले लाने पड़ते हैं, थोड़ी मिट्टी का जो कंपोस्ट का जो मिक्सर लाना पड़ता है उसमें थोड़ा सा खर्च आता है। उसके बाद तो अधिकांश चीजें घर पर ही आसानी से मिल जाती है, जैसे कि किचन वेस्ट से खाद हो गई, पुराने ड्रम, बोरी वगैरह, ये सब घर पे ही मिल जाते हैं जिनको अपन गमलों की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरह से छत पर बागवानी बहुत ही सस्ती, टिकाऊ और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और यह बिल्कुल भी महंगी नहीं है
1: और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, इसके साथ ही साथ ये मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसे अच्छी है कि जैसे कि शहरों में देखा जाए साथ ही साथ गाँव में भी, जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी होने लगे हैं, इससे थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ने का ये एक अच्छा अवसर है। इसके साथ ही इंसान जो है तनाव मुक्त भी रहता है।

0: बिल्कुल केबा का मतलब है कि सब्जी बनाना कोई इच्छा होवे या समय होवे, एक बर्तन लेके जाओ, पेड़ा के बीच में बैठो, गमला सो चार टमाटर दो मिर्ची सारी चीजा सब निकाली बटे के बटे काटी पीटी और प्रकृति से जुड़ता हुआ अच्छी तरह से शुद्ध गुणवत्ता वाली चीजा आपने घर पे ही उपलब्ध हो जाओ। बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहा हो। चलता चलता जो लोग या सोच रहा है कि बागवानी छत पे आप कर लिया और अभी तक शुरुआत कौन करी, एक सामान्य सी बात है, माने लोगों ने कहीं आप संदेश देनी चाहो कि बिना देरी करिया हुआ गुणवत्ता वाली चीजें अगर चाहिए घर पे ही सब्जियां तैयार करनी है तो आप छत पर बागवानी करके सेहत ने भी अच्छी रख सको, पर्यावरण ने भी अच्छो रख सको और समय की भी बचत कर सको।
1: कि मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज की इस भीड़ भरी जिंदगी में जैसे कि लोगों को समय नहीं होता है बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का, और जैसे कि प्रदूषण आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा है, तो जैसे घर पे बागवानी लगाने से एक तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो उनको ताजी ऑक्सीजन मिलेगी और इसके साथ ही साथ घर का तापमान तो नियंत्रित रहेगा ही रहेगा, और लोग जो है उस बागवानी को एक शौक के तरीके से अपनाते हैं लेकिन वो उनके स्वास्थ्य के साथ साथ ही पर्यावरण के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा।
0: बिल्कुल,
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसान भाई और जो भी मतलब शहरी परिवार है सब इसे आसानी से कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि इसे छोटे स्तर से शुरू करें और पौधों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएं। याद रखें छत पर बगीचा, परिवार में तंदुरुस्ती और घर में खुशहाली। थोड़ी मेहनत और थोड़ी समझदारी और जैविक तरीके अपनाकर आप भी अपनी छत पर बगीचा उगा सकते हैं।
0: बिल्कुल रेशमा यादव जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी, छत पर बागवानी क्या करा। आप चोमूसू पधारिया, आप पीएचडी स्कॉलर हैं, कार्यक्रम में आवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो मैंने सुनी है ना आप जानकारी ली छत पर बागवानी क्या करा। हाँ रेशमा यादव जी इतनी चूकी जानकारी दी है, आपने दुर्लभ भाई इतनी चूकी जानकारी ली, दोनों देवा घणु घणु धन्यवाद। और धन्यवाद स्वरूप, सुना एक चोकू सु गीत
3: सुनाओ भाई साहब।

0: भाई साहब घणो ही चोखो लोकगीत थे सुनाया, लेकिन आप लोकगीत भी आपा सुन लिया, जानकारी भी आपा ले लिया, लेकिन अब आपने कार्यक्रम को दूसरो छोर नेड़े आते जा रहे हैं। मतलब घड़ी री सुइया आपने इशारो कर रही है कि चालो जी चालो, चाल बारो टेम हो चालो है। तो आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में इतो ही, आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम से थे आज्ञा दो मने, यानी मने सुनी ने
1: और विशाल गौड़ ने,
0: तो चाला और करा
1: राम राम सा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
1: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
2: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा।
3: आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही

आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य

उद्देश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति

0: अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृहमंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृहमंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कलवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया गया। श्रोताओं अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले

0: सभी श्रोताओं को राखी का नमस्कार। मौसम औसम भी है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, बादलों ने आसमान को घेरा है, हवाओं में मिट्टी की खुशबू है और दिल में बस एक ही उमंग, क्या यही है ना?
1: सुहाने मौसम में याद और संगीत की फुहारों के साथ सुनते 1969 की फिल्म में आया सावन झूम की काफी

यह सावन झूम के वाकई सभी जगह ऐसा ही माहौल हो रहा है। बारिश हर जगह हो रही है और झूले भी पड़े हैं, घटाएं भी घिरी हुई है और दिल कह रहा है बस संगीत के साथ बहते जाओ और आया सावन झूम के गीत सुनते जाओ। सावन सिर्फ बारिश लेकर नहीं आता है तो मीठी यादें भी लेकर आता है। आइए अब आपको अगला गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि अभी आपने आया सावन झूम के फिल्म से गीत सुना था। आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, बोल अरुण बख्शी के संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, अगला गाना जो आपको और भी इस मौसम के साथ, इस रुत के साथ आपके दिल को खुश कर देगा। जब मौसम करवट लेता है, हवाओं में खुशबू घुलती है और पेड़ों की डालियां झूमने लगती है, तो दिल तो बस यही कहता है ना कि रुत का बदलना सिर्फ मौसम का बदलना नहीं होता, ये तो दिल में उमंग, चेहरे पर मुस्कान और फिजाओं में संगीत भर देता है। सुखिंदर सिंह की आवाज में अभी आप ये गीत सुनेंगे, 1947 अर्थ फिल्म से, बोल जावेद अख्तर की, संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह सफर यही संपन्न होता है। रात्रि 10:30 पर आप फिर से फिल्म संगीत सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कीम, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित होंगे और रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से ही करंट अफेयर्स कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
1: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
2: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।
0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में स्पोर्ट्स स्कीम कार्यक्रम प्रसारित होगा।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन

0: एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली मांझी ने जीता रजत पदक। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आर प्रज्ञानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्रिज का खिताब। एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। एएचएफ जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, अनमोल एक्का बने कप्तान। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। भारोत्तोलन से जहां तितली मांझी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम पदक किया है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इसी स्पर्धा में परिष्मिता गोगोई 141 किलोग्राम के कुल वजन के साथ चौथे स्थान पर रही। परिष्मिता स्नैच में 65 और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन ही उठा सकी। ये प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी और उम्मीद करें कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतें। और अब रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना केची को हराया। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट।
1: विश्व में 50वें नंबर की खिलाड़ी अश्मिता ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से पराजित किया। हिना ने अच्छी शुरुआत करते हुए 7-5 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अश्मिता ने स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी की कुछ गलतियों से जापान की खिलाड़ी ने इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। अश्मिता ने हालांकि कड़ी चुनौती पेश की, उन्होंने 12-12 और फिर 15-15 पर स्कोर बराबर कर लिया। इसके बाद उन्होंने 17-15 और 18-16 से बढ़त भी बना ली। हालांकि हिना ने यहां एक बार फिर वापसी की और पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में अश्मिता ने जोरदार वापसी की, स्कोर 7-7 से बराबर होने के बाद उन्होंने लगातार 6 अंक जीतकर 13-7 की बढ़त बना ली। हालांकि हिना ने अंतर को कम करके 14-16 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखा और अगले 6 में से 5 अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम भी कुछ इसी तरह चला, जिसमें अश्मिता ने 9-3 की बढ़त बनाई और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बरकरार रखी। उन्होंने इसे 18-11 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हिना ने फिर जोरदार वापसी की और लगातार 6 अंक जीतकर अंतर को 17-18 तक कम कर दिया। अश्मिता ने अंतिम क्षणों में अपना संयम बनाए रखा और यादगार जीत हासिल की। उधर रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और अपने ही देश की तन्वी शर्मा को 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में 18-21, 21-19, 21-18 से पराजित किया। तन्वी के खिलाफ ये उनकी चौथी जीत है। पहले गेम में रक्षिता ने 13-8 की बढ़त बनाई, लेकिन तन्वी ने शानदार वापसी की और अगले 9 में से 8 अंक हासिल किए और स्कोर को 8-13 से 16-14 तक ले जाने के बाद गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे और तीसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम के आखिर में तन्वी की 3 गलतियां उन्हें भारी पड़ गयी। रक्षिता ने इसका फायदा उठाया और तीसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया के मान वेई चोंग और सो वुई यिक से 7-21, 8-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के।
0: आज का मुकाबला श्रोताओं काफी दिलचस्प रहा। तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें थी, लेकिन आज रक्षिता से हारकर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाल ही में उन्होंने ताइपे ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रतियोगिता में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन रक्षिता ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अगर हम रक्षिता की बात करें तो 2024 में स्लोवानिया ओपन बीडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल खिताब उन्होंने अपने नाम किया है और वियतनाम इंटरनेशनल चैलेंजेस

0: का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। और अगर उनकी प्रतिद्वंदी की बात की जाए जो कि अश्मिता चालिहा है, जिन्होंने 2018 में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंजर्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल चैलेंजर्स में भी महिला सिंगल्स में उन्होंने जीत दर्ज की और 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंजर जो कि 2023 में हुआ था उसमें भी महिला सिंगल्स का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी जीत दर्ज करता है और फाइनल में अपनी जगह बनाता है। और अब बात करते हैं शह और मात का खेल शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानानंद ने एक राउंड बाकी रहते ही जावोकिर सिंदारोव को हराया। आइए सुनते हैं खिताबी मुकाबले पर ये रिपोर्ट।
1: प्रज्ञान आनंद और उज्बेकिस्तान की जावोकिर सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 अंक हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। सिंदारोव ने 22 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया जबकि वेस्ली सू 20.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेवन एरोनियन चौथे स्थान पर रहे और फैबियानो करवाना, लीनियर डोमिंगवेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे। इस जीत से प्रज्ञान आनंद सिंह फील्ड कप के पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञान आनंद ने 5 दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 पॉइंट के अंतर से उपविजेता रहे। मैच के बाद प्रज्ञान आनंद ने कहा कि इस प्रतियोगिता से मेरे गेम में सुधार हुआ है।
2: It's great. I mean, you see the score, it's like 1.5 round to spare, everything looks smooth, but wasn't the case. It was crazy. I mean, kudos to Javakiri, kept the fight till the end. Yeah, he was also fighting very well, so. I mean, just basically what I said yesterday, not to do anything stupid myself, but then I managed to do it against Avander in the second game where I was just, I had so much control and I was just winning, but and then I managed to basically not take the draw and then I lost the game, which is exactly what I wanted to avoid. I mean, even though I lost the game, I felt my game quality. Okay. Yeah, I was just trying to calm myself and I also wanted to like win it separately. I wanted to win the rapid and split separately, which I think I managed, so that's also good.
1: टूर्नामेंट में 10 बेहतरीन ग्रैंड मास्टर शामिल हुए थे। 5 दिन के खेल में खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 ब्लिट्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए जिनमें सिंगफील्ड कप और GCT ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं आपको बता दें कि ये साल प्रज्ञानानंद के लिए बेहतरीन रहा है। इस वर्ष ही जून में उन्होंने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। अमेरिका के यूजीन में आयोजित एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर चैंपियनशिप के अगले दौर में क्वालिफाई किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: 19 वर्षीय अशफाक पहले दौर की हीट 5 वर्ग में 45.81 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डी लियोन 45.63 सेकंड के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। अशफाक ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान अशफाक ने इस वर्ष अप्रैल में बनाए गए अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 46.05 सेकंड को भी बेहतर किया। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में 18 वर्षीय कंबोज 53.24 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रही। चीन की सू यिक्सन पहले और अमेरिका की जैसली मैसी दूसरे स्थान पर रही। पुरुषों की ऊंची कूद में बसंत ने क्वालिफाइंग राउंड में 2.14 मीटर की कूद लगाकर पांचवा और कुल मिलाकर 11वां स्थान हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: अश्रुता आपको बता दें कि तनु चौधरी अपनी हीट में 5वें और कुल मिलाकर 33वें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रही। वहीं अमित कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 8वां और अंतिम स्थान हासिल किया। पी रोशन और धनुष राज दोनों ही पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। और अब

0: बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ने एएचएफ जूनियर एशिया कप के लिए आज भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान अनमोल एक्का के हाथों में सौंपी गई है। यह प्रतियोगिता चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, जबकि दो वैकल्पिक प्लेयर्स को भी टीम में रखा गया है। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।
1: डिफेंडर अनमोल एक्का की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में बेल्जियम का एक शानदार एक्सपोजर दौरा पूरा किया, जहां टीम की भिड़ंत मजबूत इंटरनेशनल टीमों से हुई थी। इस दौरे से खिलाड़ियों को मैच का अनुभव और अहम सीख मिली, जिससे टीम अपनी प्रगति का आकलन कर सकी, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकी और एएचएफ जूनियर एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकी। टीम बेंगलुरु में साई सेंटर पर मलेशियाई अंडर 21 टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलकर और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल कर रही है। टीम के चयन पर बात करते हुए कोच सोयस ने कहा कि यह टूर्नामेंट एशिया की प्रमुख जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है, जो महाद्वीप की शीर्ष उभरती टीमों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में एक साथ लाती है। ये प्रतियोगिता भारत की युवा टीम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खुद को परखने और अपनी मजबूत छाप छोड़ने का मौका देगा।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन में अधिक पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और देश के खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी हितधारकों के लिए खिलाड़ियों के हित और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डोपिंग के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने भारतीय खेलों से इस खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक रणनीति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, सुविधादाताओं और उपयोगकर्ताओं सहित पूरी श्रृंखला से एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। खेल मंत्री ने भारत के स्वदेशी कोचिंग तंत्र को मजबूत करने और विदेशी प्रशिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अनुपालन, सुशासन प्रथाओं और एशियाई खेल 2026, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई। और अब बात गोल्फ पर। स्नेहा सिंह ने तमिलनाडु के होसुर में हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 11वें चरण का खिताब अपने नाम किया। स्नेहा ने 6 शॉट की बढ़त गंवाने के बाद प्लेऑफ में वापसी करते हुए वाणी कपूर को हराया। स्नेहा ने दूसरे दिन 10 अंडर का कार्ड खेला और अंतिम दिन 5 ओवर 76 का कार्ड खेला। अब कार्यक्रम में बात उस खिलाड़ी की जिसने अपने स्विंग गेंदबाजी से विश्व के कई बल्लेबाजों को छकाया है। धारदार गेंदबाज और भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले दीपक चहर का आज जन्मदिन है। 2018 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले चहर ने 13 एक दिवसीय में 16 विकेट लिए हैं और 2 अर्धशतक लगाते हुए 203 रन बनाए हैं। वहीं 25 टी20 में उन्होंने 31 विकेट झटके हैं। चहर ने 2016 से अब तक आईपीएल में 96 विकेट अपने नाम किए। दीपक ने पुरुष टी20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे।
2: So much riding on this ball. It's a hat-trick ball. He gets a wicket with the best figures ever in T20 cricket. And he does! It's a hat-trick. It's the best figures ever in T20 internationals. For Deepak Chahar, he's finished 6 for 7. The first Indian to take a hat-trick. He set all kinds of landmarks. Well done, Deepak Chahar.
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारे संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस

0: प्रेसवार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेसवार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गयी। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की

0: की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरनास्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
4: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौगहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम मैंडिक 1.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई के अंदर से।

0: पर्दा हटा दो।
1: एक फूल दो माले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, रवि का संगीत।
2: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
3: परेशान हूं मैं।
2: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
4: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
2: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया और आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आपने सुनी।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।

0: के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
2: मेरा सारा साथ होगा।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

आशा भोसले की आवाज में हमसाया फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत, शिवन रिजवी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, आपके लिए।

0: झुक गया आसमां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरा जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
2: वंदे मातरम।
1: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
3: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

आशा भोसले की आवाज में नरम गरम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और कार्यक्रम का नाम है आपके लिए।

तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। संगीत का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जी ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई।

0: पंछी।
1: हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँगते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

साठ के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंचपोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतील शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतील शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं है। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर

0: गगन पर पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर दिल मेरा एक आस का।
1: जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे. ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जे ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 10 बजे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के इस नगमे के साथ। कलाम जावेद अख्तर का है और मौसिकी राहुल देव बर्मन की।

अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति को सुना फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में। आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा गीत नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की है और फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें।

आशिकी जी हां श्रोताओं, अगला गीत हमने इसे फिल्म से चुना है जिसे युगल स्वर दिए हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू ने। नगमा निगार हैं समीर और मौसिकार एक बार फिर से नदीम श्रवण।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की मिली जुली आवाजों में, जिसे हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। बोल नवाब आरजू के हैं और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत अभिजीत और अलका याग्निक के स्वरों में फिल्म चलते चलते से। कलाम जावेद अख्तर का है और मौसिकी जतिन ललित की।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की मिली जुली आवाज में फिल्म दिल तो पागल है से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन उत्तम सिंह का।

हम दिल दे चुके सनम। जी हां श्रोताओं, अगला गीत हमने इसी फिल्म से चुना है जिसे युगल स्वर दिए हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। नगमा निगार है महबूब और मौसिकार इस्माइल दरबार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश, आई सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में फिल्म तेरे नाम से। गीत लिखा है समीर ने और सुरों में ढाला है हिमेश रेशमिया ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गाये फिल्म तेरे नाम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ताजा समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत तीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि

0: सहायता के लिए 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मेन बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब्बा खैर, जय हिंद।